सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1947 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:52 होने को है। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए 8700014242।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
9: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
10: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
9: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की, और डायरेक्ट टू हार्ट,
10: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
9: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
10: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
9: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आइए कार्यक्रम आरंभ करते हैं प्रभु श्री राम की वंदना से।

हे हनुमान, आप इस जगत के सृजनहार हैं। आपके स्मरण मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं। आपका स्मरण मंगलमय होता है। आपका नाम मात्र ही सारे विघ्नों को हरने वाला है।

प्रभु आपका हृदय बहुत बड़ा है। इस माया मोह भरे संसार ने बहुत दुख दिए, यहाँ तक कि मैं खुद इस माया भरी दुनिया में खो गई, पर आपने कभी मेरे साथ न छोड़ा। हे प्रभु, इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना।

मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है प्रभु, तो लाख मुश्किलें भी दे दे, मुझे तुझ पे ही भरोसा है।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं चिंतन बिंदु।
1: मैं मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता से इस कथा का निवेदन करूं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जीवन में आपको अगर यह पंचभौतिक शरीर प्राप्त हुआ है तो संसार में आपको अगर आपके कारण कोई जानता है तब तो इस जीवन का महत्व है, अन्यथा आपके पिताजी के कारण कोई आपको जानता है, चाहे आपके परिवार के बल पौरुष के कारण लोग आपको जानते हैं, तो उसमें आपका कोई सामर्थ्य नहीं है। उसमें आपके द्वारा संसार में जन्म लेना एक तरीके से निरर्थक है। आपको हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से कि हनुमान जी महाराज जब लंका के लिए जाने के लिए सारे सेनाओं ने अंगद जी से पूछा गया तो अंगद जी ने कहा, अंगद कहो जाओ मैं पारा जी संशय कज फिर तीन बारा। और नल नील सबसे पूछा गया, जामवन जी से पूछा गया, सबने अपना अपना सामर्थ्य निवेदित किया, परंतु किसी का ऐसा सामर्थ्य नहीं प्राप्त हुआ कि वह लंका जाकर के और माता जानकी जी का पता लगा करके वापस आ सके। उसी समय में एक कोने में बैठे हुए हनुमान जी महाराज सबके द्वारा लंका जाने का जाए है जहाँ तक जा सकते हैं इसका वर्णन सुन रहे थे। तब तक अचानक जामवन जी की नज़र उन पर पड़ी और जामवन जी ने कहा कि हनुमान तुम्हें पता है तुम कौन हो? हनुमान जी महाराज मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा मैं एक बंदर हूँ और मैं आपके साथ जानकी जी को ढूंढने के लिए आया हूँ, बस मुझे यह पता है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं आपको कि जो आपके सामर्थ्य को और बलवती करे। और हनुमान जी के जीवन में शायद अगर जामवन जी न मिले होते तो हनुमान जी हनुमान जी न होते। हनुमान जी महाराज से जामवन जी ने कहा तुम पवन के पुत्र हो, पवन तनय बल पवन समाना। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं पवन का पुत्र हूँ तो मेरे पिताजी की वैशिष्टता है, मैं तो कुछ हूँ नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि कवन सुकाज कठिन जग माही। तो हनुमान जी महाराज ने जामवन जी से कहा कि मेरी बड़ाई कर रहे हैं जामवन जी महाराज, जब मान बड़ाई प्राप्त होने लगे और आपको लगे कि जो आपको मान प्राप्त हो रहा है आपने उतना कुछ नहीं किया है तो और विनम्र हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं भगवत कृपा। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप इतनी बड़ाई कर रहे हो कि कवन सुकाज कठिन जग माही जो न हो ता तुम पाही। तो हनुमान जी महाराज फिर हाथ जोड़ करके बैठ गए। देखिए ये दोनों है, पहला पिताजी का सामर्थ्य के कारण मेरा सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं तो कोई असर नहीं पड़ा, दूसरा बिना कुछ किए ही बड़ाई हो रहा है उसका भी असर नहीं हनुमान जी पे पड़ा। लेकिन जैसे ही जामुन जी ने कहा कि राम काज लगित अवतारा सुनते हूँ भयो पर्वताकारा, राम काज है क्या? राम का काज केवल दशरथ के पुत्र राम का कार्य पूर्ण कर लेना, जानकी जी को ढूंढना नहीं है। राम का काज है कि आपके जीवन से आपने जी जहाँ पर आपने जन्म लिया है, जिस गांव में, जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस जिले में आपने जन्म लिया है, उन सारे अपने लोगों के बीच में कुछ ऐसा कार्य आप करें जिस राम काज लगित अवतारा सुनते हूँ भयो पर्वताकारा।
0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

निषादराज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री रामचंद्र ने अपने घर लौट जाने को सहमत किया तथा स्वयं सीता और लक्ष्मण समेत वन की राह ली। राह में मिलने वाले वनवासियों को उन्हें तापस वेश में देखकर अत्यधिक चिंता होती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में ऐसा अनुराग उमड़ पड़ता है जिसके वशीभूत वे उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। वट वृक्ष की शीतल छांह देख कोई नरम घास और पत्ते बिछाकर वहां उनसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने को कहता है, तो कोई कलश भर पानी लाकर प्रभु से आचमन कर लेने का आग्रह करता है। ऋषि कुमारों के वेश में श्री राम लक्ष्मण का अनुपम रूप देख गांव के स्त्री पुरुष इस प्रकार स्तब्ध रह जाते हैं जैसे दीपक का प्रकाश देख हिरणों का जोड़ा निस्तब्ध हो जाता है। गांव की स्त्रियां अपनी अल्प बुद्धि की विवशता बताकर सीता जी से दोनों कुमारों का परिचय जानना चाहती हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे मानस गान। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
4: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
3: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
4: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details, log on to www.ddindia.com।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासीपरिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जाक्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्टपद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलम् एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षानिर्माणक्षेत्रे निर्यातोन्मुखनीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्यविषयो विकसितभारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 85th नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूर भाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे PV सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन यूयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। पश्चात् पुरुष एकलवर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानन्दः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। यह टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has said that when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi yesterday, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. The centre has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cybercriminals are increasingly using AI to create realistic, deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms or phone calls. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand beginning today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th Regular Course and 141st Technical Graduate Course at the Indian Military Academy, Dehradun. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed concern that ongoing conflicts are imposing costs and triggering changes far beyond the regions. The minister said this while participating in a discussion with his Finnish counterpart Elina Voltunen and Assistant Foreign Minister of UAE Lana Nusebe on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland. Dr. Jaishankar also stressed the need for the international community to continue efforts to mitigate their consequences and create conditions for diplomacy. The Enforcement Directorate ED has arrested Naresh Kumar, the then superintendent in the Office of Director Development and Panchayat Haryana, in connection with the ongoing investigation in IDFC Bank fraud case. He was arrested under the provisions of Prevention of Money Laundering Act, PMLA, 2002. Investigation in the case has revealed embezzlement of public funds amounting to 645 crore rupees from the bank accounts of Haryana government, Chandigarh administration and two private schools maintained with IDFC First Bank. US President Donald Trump said last night that he has called off new military strikes on Iran hours after threatening to escalate the war by seizing control of the country's oil industry. In a social media post, Trump said that he made the move based on the fact that discussions with Iran have been brought to the highest level of Iranian leadership and approved. The announcement came after 2 days of back-and-forth attacks between the US and Iran had pushed the Middle East closer to the resumption of a full-scale war. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston in Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales, with the final set to take place on the 5th of July at the iconic Lord's Cricket Ground. India will start the campaign against arch-rivals Pakistan on Sunday. Harmanpreet Kaur-led Indian side will be looking to create history as they aim for their first Women's T20 World Cup title. And that is the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, कहा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात, कहा प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल तथा प्रशासक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
3: नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
5: The topic for the Governing Council meeting.
6: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
5: To youth, to working life, to old age.
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
7: नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात प्रदेश में मौसम जनित मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय रहते सटीक चेतावनी उपलब्ध होने से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने वज्रपात से होने वाली जनधन हानि की रोकथाम के लिए प्रदेश में एक डेडिकेटेड सैटेलाइट उपलब्ध कराने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में एक एक एम्स स्थापित किए जाने के साथ ग्रेटर नोएडा में एक समर्पित रोबोटिक्स क्लस्टर विकसित करने, आंगनबाड़ी भवन निर्माण के निर्धारित लागत का पुनरीक्षण किए जाने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रीमियम राशि को बढ़ाने समेत अन्य मांगों को नीति आयोग के समक्ष रखा और इन्हें पूरा किए जाने की मांग की। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कल केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
8: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं था। ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29,00,000 मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है। अयोध्या में कल हुए होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर DG होमगार्ड DK ठाकुर ने बताया कि होमगार्ड से जुड़ी जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
2: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया, उन्होंने 2 बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद EPF टाइप सुझाव दिया जाए, EPF टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है।
0: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रदेश के अमरोहा, पीलीभीत और गाजियाबाद सहित कुछ अन्य जिलों में बीती रात बारिश होने से लोग उमस भरी गर्मी से राहत में हैं। पीलीभीत में आज सुबह भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में कल दिन भर बादल छाए रहे। वहीं बस्ती जिले में कल रात आकाशीय बिजली गिरने से एक छप्पर के जलने की सूचना है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात। कहा, प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29,00,000 मतदाता। और केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की।

0: इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

कार्यक्रम का सबसे पहला गाना फिल्म दुश्मन से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल है आनंद बख्शी के।

हाथी मेरे साथी, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार थे आनंद बख्शी। चलिए अगला गीत सुनते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: आपकी कसम, इस फिल्म का आप गीत सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, और उनके साथ थी लता मंगेशकर।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
0: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में समाचार रिले होंगे।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं।

0: आप भी लगवा लीजिए, 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो के वाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
5: We signed this year a free trade agreement with Europe.
6: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
7: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
8: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
7: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमेरिका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6-7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. U.S. President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the Centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
11: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over Rs. 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
10: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
12: In the area, we see immense potential of hydrocarbon. At the initiative of Union Home Ministry, particularly at the initiative of Honorable Union Home Minister, both Assam and Nagaland is joining hands to share the proceeds of this hydrocarbon potential in terms of royalty and facilitate its extraction so that nation at large can be benefited.
10: Nagaland Chief Minister Nephew Ryu has also termed the signing of the tripartite MOU for mineral oil operations in the Assam-Nagaland boundary areas as a historic milestone. We have more from our correspondent in Kohima.
13: Expressing gratitude to the central government, Mr. Ryu said its commitment to peace, stability and development in the Northeast had made the agreement possible. He also thanked Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and the government of Assam for their cooperation and goodwill. Mr. Ryu said the MOU reflects the maturity of relations between Nagaland and Assam and their shared commitment to regional development. He noted that while unresolved border issues had hindered resource development for decades, the MOU provides a framework that will benefit both present and future generations. Mr. Ryo said the agreement will unlock the economic potential of sectors A to F along the Assam-Nagaland border, enhancing economic activity, resource management, interstate cooperation, and creating new opportunities for the people. Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
10: The center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cybercriminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. More from our correspondent.
14: The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. They collect facial data of victims, sometimes by convincing them to perform simple actions such as blinking, turning their head, or speaking on camera. The government has advised financial institutions, including fintech companies, to strengthen deepfake detection mechanisms and enhance customer onboarding systems. The individuals have also been urged to secure their biometric data, remain alert to suspicious login attempts, and regularly monitor email or SMS notifications related to financial activities. Citizens are also advised to report any suspicious financial transactions immediately through the National Cybercrime Reporting Portal. With Dipendra Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
10: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has stressed the need for resilient and diversified supply chains, sustained diplomatic efforts and greater international cooperation to deal with the fallout of ongoing conflicts. Participating in a discussion on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland, Dr. Jayashankar said, the impact of the conflicts extend far beyond the regions where they occur. He said there is broad agreement that the international community must continue efforts to mitigate the consequences of conflicts and create conditions conducive to diplomacy. On energy security, Dr. Jayashankar reiterated that India's energy choices are guided by national interest and that purchases are made on considerations of affordability and availability.
15: Today, our largest oil supplier, little less than 40%, is Russia. Our largest gas supply is the United States. And that was not the case till the 28th of February of this year. The main supplier was Qatar. So what is happening is the world is also de-risking on the region. People are looking for alternative energy sources and saying, okay, I'm prepared to buy at longer distance, maybe at a higher cost, but there is a greater security about it, predictability about it. So what I see in a way is that the global energy scenario will fundamentally change after this.
10: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards positioning India as a global leader through its foreign policy. A report.
7: Over the last 12 years, India emerged as a formidable global leader driven by bold initiatives that fuse ambition with action. Prime Minister Narendra Modi's leadership has anchored these efforts in responsibility and inclusivity, ensuring India's voice resonates across global platforms. India strengthened its old relationship while making new friends, infusing fresh energy into India's foreign policy while keeping the principle of India first supreme. Humanitarian assistance and disaster relief operations are a vital part of India's global engagement. Cyclone Dithwa made landfall on the eastern coast of Sri Lanka in November 2025, leaving hundreds dead, thousands displaced, and critical infrastructure damaged. Standing in solidarity with the people of Sri Lanka, India launched Operation Sagar Bandhu to provide immediate humanitarian assistance and disaster relief to Sri Lanka. The effort brought together the Indian Navy, Air Force, Army, and Disaster Response Team in a coordinated rescue and relief operation. India provided comprehensive support to Sri Lanka, including immediate relief supplies, medical aid, search and rescue assistance, and restoration of damaged infrastructure. Thanking the Indian government, Sri Lanka's Deputy Minister for Ports and Civil Aviation Jinit Ruwan Kodithuwakku stated that India had shown immense warmth and solidarity toward the people of Sri Lanka.
16: We are very thankful to India because since the day this Ditwa happened, opened their warm heart to us and we really appreciate their help. We are very good friend of India and we would like to extend our thanks to Indian government and the Indian people on behalf of Sri Lankan government and the Sri Lankan people.
7: The major highlight of India's foreign policy came during the COVID-19 crisis. India launched the Vaccine Maitri initiative as a testament to its human-centric diplomacy. Since January 2021, India has supplied over 30.12 crore vaccine doses to 99 countries and two UN bodies. This included 1.51 crore doses gifted to over 50 nations and 5.2 crore doses through COVAX mechanism. Talking to Akashvani News,

0: नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज ख्वातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। एक अहम वाकये में मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मजकूरा मुफाहमत नामे पर दस्तखत एक तारीखी लम्हा है और इससे मुल्क में तेल और कुदरती गैस की तलाश के इम्कानात में इजाफा होगा।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आसाम और नागालैंड के दरमियान सरहद का मामला तवील अरसे से तस्फिया तलब है और इसकी वजह से खित्ते में मौजूद कुदरती वसाइल को मुल्क के लिए बरूए कार नहीं लाया जा सका है। नागालैंड के वजीर आला ने फ्यूरियो ने भी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने को एक तारीखी संगे मील से ताबीर किया। मरकज ने साइबर मुजरिमों की तरफ से इस बढ़ते हुए खतरे के बारे में एडवाइजरी जारी की है कि वो सिक्योरिटी निजाम से बचते हुए माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उमूर दाखिला की वजारत के तहत भारतीय साइबर जराइम तालमेल मरकज की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक साइबर मुजरिम डीप फेक वीडियो और मसनूई शनाख्त तैयार करने के लिए AI का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मस्कुरा एडवाइजरी में इस बात को उजागर किया गया है कि धोखादही करने वाले अफराद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मुलाजिमत से मुतालिक पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स या फोन कॉल्स के जरिए राबते कायम करते हैं। ये अनासिर लोगों के चेहरे से मुतालिक डाटा इकट्ठा करते हैं और कभी कभी वो इसके लिए लोगों को पलक झपकाने, घूमकर देखने या कैमरे पर बोलने जैसे काम करने पर राजी कर लेते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों समेत माली इदारों को यह सलाह दी है कि वो डीप फेक का पता लगाने के तरीकेकार को मुस्तहकम बनाएं और सारफीन को शामिल करने के निजाम को वसत दें। लोगों से भी जोर देकर यह कहा गया है कि वो अपना बायोमेट्रिक डाटा महफूज रखें, लॉगिन करने की मशकूक कोशिशों से चौकस रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या SMS नोटिफिकेशन पर बाकायदगी से नजर रखें। शहरियों को यह सलाह भी दी गई है कि वो कौमी साइबर जराइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी तरह के मुश्तबा माली लेन देन की इत्तला बिला ताखीर दें। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई और टकराव के असरात से निमटने के लिए मजबूत और मतनव सप्लाई निजाम, पायदार सफारती कोशिशों और बैन अवी इश्तराक में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। फिनलैंड में उभरती हुई ताकतों और नए जोग्राफियाई और सियासी मुकाबले के मौजू पर एक मुबहसे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप नमक हराम फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। संगीत था राहुल देव बर्मन का और बोल थे आनंद बख्शी साहब के। चलिए अगला गीत अब मैं आपको सुनवाती हूँ। फिल्म है कॉल गर्ल, संगीत सपन जगमोहन का और बोल हैं नक्श लालपुरी के। किशोर कुमार

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दूर गगन की छाव से ये गीत। बोल थे किशोर कुमार के। आइए अगला गीत सुनते हैं। फिल्म है वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

राखी और हथकड़ी, इस फिल्म से आप गीत सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत आर डी बर्मन साहब का था और गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने।

बातों बातों में इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, राजेश रोशन का संगीत था और बोल थे अमित खन्ना के, आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की।

0: आंखों आंखों में इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, संगीत शंकर जयकिशन का था और बोलते हसरत जयपुरी के। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फरुखाबाद और शाहजहांपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फरुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का।
2: फरुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल लाठर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में IGR शिकायतों के निस्तारण एवं उनकी गुणवत्ता की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, शिकायतकर्ताओं से संवाद, साक्ष्यों के अपलोड तथा फीडबैक की गुणवत्ता की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सक्षम अधिकारी स्वयं निस्तारण की आख्या परीक्षण कर उसे पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण तथा तत्परक समाधान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक निस्तारण आख्या के साथ आवश्यक साक्ष्य अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाएं, जिसमें शिकायतकर्ता से वास्ता, स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट तथा शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में दो पड़ोसियों के बयान सम्मिलित हों। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके वेतन रोकने के आदेश दिए।
3: समीक्षा करने पे पाया गया कि असंतोषजनक फीडबैक के मुख्य कारण ये थे कि शिकायतकर्ता से फोन पे बात की नहीं गई है, इसलिए बार बार निर्देशित भी किया गया था मीटिंग के तहत कि इसको फीडबैक लिया जाए।
2: फरुखाबाद जिलाधिकारी द्वारा जनपद के हरदोई कमालगंज मार्ग पर गंगा नदी पर 191.13 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने पहुंच मार्ग पर संभव कटान वाले स्थलों के निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से अब तक किए गए सुरक्षात्मक कार्यों की प्रगति की आख्या प्राप्त की। उन्होंने गंगा नदी किनारे कराए जा रहे पिचिंग कार्यों के भौतिक सत्यापन भी किया तथा कार्यों की गुणवत्ता तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए जाने के पूरे निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में पूरी गुणवत्ता तथा मानक के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें, जिसमें आम जन को आवागमन से बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि परियोजना जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने नियमित रूप से कार्यों की निगरानी तथा कटान प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई क्षति संभावित न रहे। फरुखाबाद जनपद में परिवहन विभाग द्वारा किसानों की सुविधा एवं उनके वाहनों से संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष किसान ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से किसानों को ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आवश्यक सेवाएं सरल एवं सुगम रूप से उपलब्ध कराई गई। शिविर में पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन, आवश्यक अभिलेखों की जाँच, अन्य संबंधित प्रक्रियाएं पूर्ण की गई, जिससे किसानों को विभागीय कार्यालय के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। प्रशासन द्वारा ये प्रयास किसानों को सुगम, पारदर्शी एवं जनहित सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। फरुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 18 करोड़ की लागत से बन रहे क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य में देरी के चलते उस पर पेनल्टी लगाई गई है तथा कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द क्रिटिकल केयर यूनिट को हैंडओवर कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रामा सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। फरुखाबाद जनपद में मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना अंतर्गत शाकभाजी कार्यक्रम एवं बागवानी मशीनरीकरण योजनाओं के हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नवीन गाइडलाइन के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद फरुखाबाद के कृषकों के लिए विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त हुए। योजनाओं के उद्देश्य कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों तथा कृषि यंत्रीकरण से जोड़ते हुए उनकी आय में वृद्धि कराना है। आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शंकर शाकभाजी कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य वर्ग हेतु 30 हेक्टेयर तथा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 10 हेक्टेयर, कुल 40 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना आधारित बागवानी मशीनीकरण योजना अंतर्गत कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। फरुखाबाद जनपद में जिला जज नीरज कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का फीता काटकर समाधान समारोह का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण में रफ्तार मिलेगी, सुलह समझौतों से समाधान होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में समाधान समारोह 2026 के सफल आयोजन को लेकर जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया गया। आगामी 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत से पहले चिन्हित वादों के निस्तारण हेतु प्री सिटिंग वार्ताओं और सुलह समझौते की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इस अवसर पर जिला जज समेत अन्य न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।
1: फरुखाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्रा का।
4: बीता माह जनपद शाहजहांपुर के लिए विकास, जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक उपलब्धियों, धार्मिक आयोजनों और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। जिले में जहां एक ओर विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी जन जागरण के लिए विविध कार्यक्रमों के माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। माह के पहले सप्ताह में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिर्जापुर विकास खंड के ग्राम पहरुआ स्थित ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण, सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का उद्देश्य तालाब में रहने वाले कछुओं का संरक्षण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन तथा जैव विविधता को बढ़ावा देना है। जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर तालाब को संरक्षित करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही भैंसी और गोमती नदी तटों पर हरिशंकरी वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन का संदेश दिया गया। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर क्षेत्र में चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। नगर निगम की समीक्षा बैठक में 108 सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई तथा 15 जून तक 5 प्रमुख सड़कों का निर्माण पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। माह के दूसरे सप्ताह में कानून व्यवस्था और पारदर्शिता को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अभ्यर्थियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए विशेष प्रबंध किए गए। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष यातायात अभियान में 1013 वाहनों के चालान किए गए तथा 3 नए वाहनों को सीज किया गया। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी शाहजहांपुर में अपनी पहचान मजबूत की। जिले के युवा रंगकर्मी यश देव शर्मा और शैलेंद्र पटेल का चयन भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ की अंतिम चयन कार्यशाला के लिए हुआ। इस उपलब्धि को जिले के रंगमंच जगत के लिए गौरवपूर्ण माना जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में गायत्री परिवार की ज्योति कलश रथ यात्रा पूरे माह चर्चा का केंद्र रही। शांति कुंज हरिद्वार से 2400 तीर्थों की रज लेकर निकली यह यात्रा जिले के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा, आरती और जयघोष के साथ स्वागत किया। रथ यात्रा के माध्यम से विचार क्रांति, युग निर्माण, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, आत्म सुधार और संस्कार निर्माण का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर दीप यज्ञ, सामूहिक प्रार्थना और साहित्य वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने और समाज निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भावलखेड़ा विकास खंड के अंतर्गत तहवरगंज आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा एक बालिका का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना शामिल है, ताकि नवजात बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और संस्कारित नई पीढ़ी के निर्माण में आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। एक जनपद एक उत्पाद ODOP वित्त पोषण योजना स्थानीय उद्यमियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बन रही है। योजना का लाभ लेकर शाहजहांपुर के 2 उद्यमियों ने न केवल अपना कारोबार स्थापित किया बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है। मोहल्ला बाड़ूजी पेशावरी निवासी मोहम्मद राशिद ने जरी जरदोजी की इकाई स्थापित करने के लिए केनरा बैंक घंटाघर शाखा से 3 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया। इस सहायता से उन्होंने अपना काम शुरू किया, जिससे 5 अतिरिक्त परिवारों को रोजगार मिला। वर्तमान में उनकी इकाई का वार्षिक कारोबार 5 लाख रुपए से भी अधिक पहुंच चुका है। वहीं मोहल्ला लोधीपुर निवासी रुकैया खान ने केनरा बैंक सदर शाखा से 5 लाख रुपए का ऋण लेकर जरी जरदोजी की इकाई स्थापित की। उनके उद्यम से भी 5 परिवारों को रोजगार मिला। वर्तमान में उनकी इकाई का कारोबार 9 लाख रुपए से अधिक का हो गया है। दोनों उद्यमियों ने अपनी सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा मिले सहयोग और प्रोत्साहन को दिया है। उन्होंने कहा कि ODOP योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने और दूसरों को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: सीमांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम हमारे लखनऊ केंद्र से।
3: आप देखने की उम्र है, लेकिन अफसोस कि आज भी दुनिया के लाखों बच्चे बचपन में खेलने कूदने सीखने और ख्वाब देखने के बजाय मजदूरी करने पर मजबूर हैं। वालिदैन की मजबूरी बचपन पर भारी पड़ती है और बच्चे कहीं ना कहीं काम काज में लग जाते हैं। इस हसास मसले पर बेदारी के लिए हर साल 12 जून को यानी आज दुनिया भर में आलमी योम इंसदाद इतफाल मजदूरी मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद बच्चों को मशक्क़त और मजदूरी के बोझ से निजात दिलाने और उनके हकूक के तहफ़ के लिए शऊर बेदार करना है। सामाइन, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब इतफाल मजदूरी की इस बुराई को रोकने के लिए हर सतह पर कोशिश करें। खुद तो बेदार हों ही, दूसरों को भी इसके लिए बेदार करें। आइए हम सब मिलकर आज के दिन ये अहद करें कि हर बच्चे की तालीम तहफ़ और बेहतर मुस्तकबिल फराहम करने में अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि बच्चों के हाथों में औजार नहीं किताबें होनी चाहिए और उनकी आँखों में महरूमी नहीं उम्मीद और कामयाबी के ख्वाब होने चाहिए। आइए मिलकर एक ऐसा मुआशरा तश्कील दें जहाँ हर बच्चा महफूज खुशहाल और तालीम याफ्ता हो। सामने कराम, बात जब बचपन की हो रही है तो हम आपको बता दें कि ज़िंदगी की किताब के कुछ सफ़े ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त कभी पुराना नहीं कर पाता। उन्हीं में से

0: एक है बचपन की यादें। जोश मलियाबादी ने लिखा है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन वो हिस्सा है। बचपन जिंदगी का वो खूबसूरत दौर है जब छोटी छोटी बातों में खुशियाँ मिलती थीं। वक्त के साथ हम बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन बचपन की यादें हमारे दिल के किसी कोने में महफूज रहती हैं। बचपन की यादों पर अब पेश है खुसूसी गुफ्तगु। शरीके गुफ्तगु हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब हुसैन अफसर साहब और मोहतरमा नुजहत फातिमा साहिबा। सबसे पहला सवाल दोनों लोगों से ये है कि अगर आप लोगों से कहा जाए कि बचपन को किस तौर पे आप तशरीह कर देंगे, सबसे पहले हुसैन अफसर साहब आप बताएं।
1: जी, बचपन एक ऐसा दौर है कि जो हमेशा जितनी उम्र बढ़ती जाती है याद आता है, और वही है कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना।
0: जी
1: बचपन की यादें बहुत होती हैं, और बहुत एक ऐसा मिजाज और एक ऐसा दौर होता है कि जब आदमी को कोई टेंशन नहीं होता, ना ना कमाने का टेंशन होता है, ना घर के किराए का, ना बिजली का, ना बम्बे का। वो एक अजीब दौर होता है, और उस दौर को बहुत मुख्तसर होता है, लेकिन हम हमेशा याद रखते हैं। और ज़िंदगी के आखिरी लम्हात, बिलखुसूस जब ज़्यादा उम्र हम लोगों की हो जाती है, तो हम बचपन को बहुत याद करते हैं और सोचते हैं कि मिस कर लिया, काश हमारी उम्र पीछे चली जाए और हम उसको फिर रिवाइंड करके देखें कि क्या है। इसी तरह से बचपन में हमने बहुत बहुत दिलचस्पियाँ थीं, बहुत खेल कूद, बहुत लोगों की मदद की।
0: आप बताएं मोहतरमा, किस तरीके से, क्योंकि आप टीचिंग शोबे से भी जुड़ी हुई हैं, तो बचपन को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगी?
2: बहुत शुक्रिया उमर साहब। मैं इस पे पहले तो कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, मैं
0: जी,
2: वो
0: जी।
2: पेश करना चाहूंगी।
0: इरशाद।
2: काश वो फिर मासूम सा बचपन का जमाना आए।
0: वाह।
2: काश वो फिर मासूम सा बचपन का जमाना आए, फिर यूं ही हर बात पे हंसने का बहाना आए।
0: वाह वाह, बहुत उम्दा।
2: बाबा लौटे मेरे भी खिलौना लेकर। बाबा लौटे भी मेरे खिलौना लेकर, फिर मेरे हाथ में वो बचपन का खजाना आए।
0: वाह वाह, बहुत उम्दा।
2: काश मेरी माँ जैसी दुनिया की भी फितरत हो जाए। काश मेरी माँ जैसी दुनिया की भी फितरत हो जाए, जब मैं रूठूं तो बिन बात के उनको भी मनाना आ जाए। बचपन ऐसा ही होता है, हम सब अपने बचपन में ऐसे ही जिए हैं।
0: अगला सवाल हमारा ये है कि बचपन तो सीखने का दौर होता है, सीखते हैं, खेलते हैं, लेकिन क्या हम आपकी ज़िंदगी में, दोनों हमारे जो मेहमान हैं, दोनों की ज़िंदगी में क्या बचपन से क्या सीख मिली आप दोनों लोगों को? पहले हुसैन अफसर साहब आप बताएं।
1: हमें सीख ये मिली कि जो बुज़ुर्गों ने सिखाने की कोशिश की, वो कुछ को हमने माना, कुछ को नहीं माना।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बचपन में आदमी, बच्चा जो होता है, वो पूरी तरह से सरेंडर नहीं करता, यानी उसकी ज़िद और उसकी अना जो है वो अपने साथ रहेगी। तो हमने तो ये सीखा कि जो बुज़ुर्ग कहते थे उसको हम कोशिश करते थे कि पूरा करें, और हमने कम अज़ कम वो उस कोशिश में हम किसी हद तक कामयाब हुए। हमें अपने करियर में भी ये कोशिश की कि हमें जो शौक़ हैगा वही रहे, ये बचपन से हमारे दिमाग में था। यानी आज भी हम सहाफ़त के मैदान में हैं, तो ये बचपने से, हम जब 10-12 साल के थे, जब से ये हमको शौक़ था, और वही शौक़ हमारा जो है वो मशगला जो है वही हमारा पेशा बना। तो ये सीख हमें बचपन से मिली।
0: मैम, आपने क्या कोई तजुर्बा ऐसा रहा हो जो बचपन में हुआ हो, फिर उसको आप अभी तक फॉलो कर रही हो, बड़ी सीख उससे मिली हो?
2: हमारे अब्बा का एक बचपन में उन्होंने हमको दो चीज़ें बताई। कहा था कि अगर तुम्हें बेटा ज़िंदगी में कामयाब होना है तो इन दो चीज़ों को हमेशा ताउम्र अपने साथ रखना। तो वो ये थी कि पहले उन्होंने हमसे ये कहा था कि कभी झूठ मत बोलो
0: जी,
2: और दूसरा एक उन्होंने हमसे कहा था कि कभी किसी का अपने से बुरा मत चाहो, ना होने दो। तो ज़िंदगी के हर कदम पर तुम्हें कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आगे बढ़ते जाओगे, और अल्लाह किस तरह से तुमको मदद पहुंचाएगा ये तुम सोच भी नहीं सकोगे। और आज हम जिस मुकाम पर हैं, और हमें लगता है मेरे अब्बा की वो सीख मैंने हमेशा उसको संभाल कर रखा, और आज भी हम उस पर चलने का या अमल करने की कोशिश करते हैं। और ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मरहले आते हैं जहाँ लगता है कि अब ये काम हमारे लिए शायद नामुमकिन है, लेकिन उस दुआओं, उस बरकत की वजह से हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं।
0: काफ़ी मशगूल और मसरूफ़ ज़िंदगी है आप लोगों की। हुसैन अफसर साहब काफ़ी मशरूफ़ सहाफ़ी हैं, आप टीचिंग के शोबे में हैं, तो बहुत सी यादें होंगी बचपन की, लेकिन कोई एक ऐसी याद जो आप लोगों को आज भी वो याद आती हो, मैम आप बताएं, कोई आपके बचपन की याद जो अभी तक आपको याद हो?
2: बचपन की याद कि मेरी जब शुरुआत हुई तो एक मदरसे से हुई
0: जी।
2: तो मैंने मदरसे में पढ़ा, उसके बाद मुझे मौका मिला कि मेरा एक स्कूल में नाम लिखा, और वो स्कूल था करामत हुसैन, उस वक्त उस करामत का ऐसा वो था कि हर एक को मतलब बड़ा जज्बा था, बड़ा मुझे शौक था कि मुझे करामत देखना है,
0: रुतबा था
2: और रुतबा एक दर्जा उसका वहाँ, एक वो था कि मतलब वहाँ पर एडमिशन्स नहीं होते हैं। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी मम्मी की दोस्त थी वो वहाँ पढ़ाती थी, उन्होंने ऐसे ही एडमिशन करा दिया। जब हम वहाँ पहली बार पहुँचे तो मुझे बस ये था कि मुझे करामत को देखना है कि कैसा है वो। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर क्लास चल रही थी, मैं जब वहाँ पर ऐसे ही झांक रही थी तो वहाँ एक मैम बैठी हुई थी। तो मैम ने कहा कौन हो तुम और ऐसे क्यों झांक रही हो? तो मैम ने कहा मैम मेरा एडमिशन यहाँ पर हुआ है और हम सिर्फ देखने आए। तो उन्होंने कहा कहाँ से पढ़ कर आई हो? तो बताया मैंने कि मैम मदरसे से पढ़ के आई हूँ। तो कहने की बैठो यहाँ पर, उर्दू तो आती होगी। मैंने कहा बिल्कुल मैम आती है उर्दू, मदरसे से पढ़ के आए तो उर्दू तो आती ही होगी।
0: बिल्कुल हाँ
2: तो कहने की ठीक है। एक बच्चे से उन्होंने कहा कि दो पेज निकालो और एक पेंसिल दो और कहा कि टेस्ट दो। अब मुझे बहुत डर एकदम खौफ लगा कि मतलब मैं पहली बार आई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या स्कूल में हो रहा, मदरसे का तो अलग तरीका है यहाँ। तो मैम ने कहा नहीं उर्दू पढ़ के आई हो, टेस्ट दो। मैंने कहा ठीक है मैम मैं दे रही हूँ। तो वहाँ पर 52 बच्चे उस वक्त उस क्लास में थे, 5th क्लास में, और 20 नंबर का वो मैम ने टेस्ट लिया था, मुझे 19 नंबर मिले थे। बाकी कोई बच्चा 12 नंबर के आगे नहीं पढ़ा था। मैम ने मुझे वहाँ बुलाया सबके सामने और खड़ा कहा कहा ये आज से इस क्लास की मॉनिटर है। वो मेरा पहला दिन था स्कूल का,
0: जी
2: वो मेरे लिए इतनी खूबसूरत याद है।
0: जी
2: और फिर मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं से हुई। उसके बाद मैंने MA PhD LU से करके वापस आज मैं वहीं पढ़ा रही हूँ।
1: वाह वाह
2: तो ये
0: वाह,
2: मेरे लिए एक ऐसा अचीवमेंट
0: बहुत
2: है कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकती।
0: बचपना हर कोई जीता है, हम लोग भी जिए, आज की नस्ल के भी लोग जी रहे हैं, और जो भी दुनिया में आएगा वो बचपन गुजारेगा। ये वक्फा जो है, क्या फ़र्क आप देख रहे हैं आप अपने बचपन में और जो आज का बचपन है उसमें, आप दोनों लोग क्या फ़र्क दे रहे हैं? क्योंकि आप लोग बहुत समाज के बहुत अहम गोशे से आप लोगों की राकबत है, तो बताएं किस तरीके से बदलाव आप लोग देख रहे हैं अपने बचपन में, वो पुराने ज़माने के बचपन में और आज के बचपन में।
1: ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा।
0: जी
1: पहले का बचपना जो था वो एक बंधा हुआ था, एक डिसिप्लिन वाला था। अब
0: जी
1: भी डिसिप्लिन तो है, लेकिन बच्चों की जो अपना वो उसका उनका सोचने समझने का अंदाज़ है वो बहुत जुदागाना है, वो चुकाएगा। और उसकी वजह एक ये है कि हमने बचपने में कुछ नहीं देखा, हमने बड़े
0: जी
1: होकर देखा टीवी, बड़े
0: जी
1: होकर हमने देखा फ़ोन, और उसके बाद देखा मोबाइल, उसके
0: जी
1: बाद देखा इंटरनेट। लेकिन अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मोबाइल लेकर ही पैदा हो रहे हैं, और वो इंटरनेट को फौरन ही वो फॉलो करने लगते हैं, और वो चीज़ें इस तरह की टेलीविज़न पर देखते हैं कि जो पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन वो चीज़ें हमने कभी नहीं देखी, यानी एक उम्र आने पर देखी। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। वो चीज़ें इतनी आउटिंग नहीं होती थी, बाहर बहुत जाने के लिए नहीं कहा जाता था कि ना जाओ। तो इस तरह से अब बच्चे जो हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट हैं, और अब बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो हम लोगों से ज़्यादा ताबनाक है।
0: मैम आप टीचर हैं, सर ने जो बताया उन बातों से आप पूरी तरीके से मुत्तफिक होंगी, क्या इनसे बचने की क्या आप हिदायत देंगी या तजावीज़ पेश करेंगी?
2: बिल्कुल हुसैन साहब ने जो कहा बिल्कुल सही है कि
0: जी
2: आजकल जो बच्चे हैं वो मोबाइल के जरिए सारी चीज़ें जान रहे हैं। हमारे दौर में, हम लोगों के बचपने में ये था कि हम लोग भाई लोगों के बीच रहते थे, उनसे वो चीज़ें, अपने बड़ों से चीज़ें, वो सारी चीज़ें हासिल करते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया या नेटवर्किंग का जो दौर है, बच्चे उनसे, और उसमें पॉजिटिव भी चीज़ें हैं, सही भी हैं और गलत भी हैं।
1: जी
2: लेकिन
1: हाँ जी
2: क्या
1: हाँ
2: कहा
1: बिल्कुल
2: गया है कि
0: जी
2: गलत बच्चे जल्दी अपना लेते हैं और सही चीज़ों को थोड़ा सा चीज़ें उनके देर में समझ में आती। लेकिन ये है कि ये माँ बाप का भी फर्ज है कि थोड़ा सा अपने बच्चों पर तवज्जे दें, उनको वक्त दें। आजकल जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि वक्त नहीं है, तो वक्त अगर हम बच्चों को नहीं देंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको नहीं जानेंगे, उनको नहीं समझेंगे, तो हम उनमें, हमारे उनमें इतना गैप आ जाएगा कि फिर ना वो मेरी बात सुनेंगे ना हम उनकी ही समझ पाएंगे। उनको कहीं तो अपने आप को बिजी रखना है, तो वो उसके लिए मोबाइल उनके पास है। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी, कि अपने बच्चों को वक्त दें, अपने बच्चों से बातचीत करें, उनकी अच्छी बुरी बातें सुने, उनको सही और गलत में फर्क बताएं।
0: एक बात ये रह गई कि जो बचपन है वो हम लोग का जो बचपन था, जो गुजरा हुआ बचपन है, उसमें पर्व त्यौहार ननिहाल ददिहाल का बड़ा सारी चीज़ों का वो होता था, तो वो किस तरीके का बदलाव हुआ है और क्या किस तरीके से आप लोग आज भी उनसे जुड़े हुए हैं?
2: बिल्कुल सही उमेर साहब, कि जब हमारा बचपन था तो जब ईद होती थी
0: जी
2: तो सुबह से बस एक शोरगुल होता था कि बस हमको आप नहला दीजिए, हमको तैयार कर दीजिए, हमें जाना है। हमारे मोहल्ले में हमारे ही साथ की बहुत सारी लड़कियां थीं, सब इकट्ठा हो के, और घर के थोड़े से ही आगे हिस्से पर एक मैदान था, जलीलिया मदरसा था, वहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगता था।

0: मेले में जाना, वहां झूला झूलना, वहां की चीजें लेना और लोगों के घर सब इकट्ठा होकर जाना और ये सोच कर जाना कि बस यहाँ से ईदी मिलनी है, ईदी लेकर फिर
1: हाँ,
0: उसको
1: उसका
0: मेले में।
1: बड़ा क्रेज
0: लेकिन अब
1: है।
0: क्रेज मतलब ऐसा रहता था कि बस, और जहाँ नहीं मिलती थी थोड़ा सा नाराजगी भी होती थी आपस में कि
1: जी
0: लो इन्होंने तो ईदी हमको दी ही नहीं। और आज जो बच्चे हमारे हैं वो ये है कि हम उनको मेले में या किसी ऐसी जगह नहीं भेज सकते हैं क्योंकि माहौल उस तरह का रहा ही नहीं
1: नहीं,
0: है। जिस
1: मेले भी
0: तरह
1: नहीं रहे हैं।
0: मेले भी नहीं रहे और मेले अगर हैं तो इतनी दूर दूर हैं कि हम अपने बच्चे को वहां पर अकेले
1: नहीं रहे।
0: नहीं भेज सकते हैं। तो बहुत बदलाव है कि बच्चे वो चीजों से महरूम हैं। हम लोगों ने जो देख लिया, हम लोगों ने जो खेल खेल लिए हैं कि बाहर खेल ले हैं, ना कोई डर ना कोई खौफ, लेकिन अब हम अपने बच्चे को इस तरह से बाहर भेज नहीं सकते, नीचे नहीं। हम लोग अब जहां रहते हैं भाई अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में आप नीचे इस तरह से छोड़ नहीं सकते, खुला घर नहीं छोड़ सकते। हम लोग जब रहते थे तो मोहल्ले थे, मोहल्ले में एक दूसरे का दरवाजा खुला हुआ है, कोई हमारे घर आ रहा, हम किसी के घर जा रहे हैं, किसी के यहाँ कुछ पक रहा है तो वो यहाँ आ रहा है। लेकिन अब वो धीरे धीरे चीजें सब खत्म होती
1: इतना
0: चली जा रही हैं। लोग इतना अपनी लाइफ
1: मिस करती हैं उसे।
0: में बहुत मिस करते हैं। बस हम अपने बच्चों को ये चीजें जरूर शेयर करते हैं, बताते हैं कि हम लोगों का बचपन बेटा ऐसे गुजरा है।
1: हुसैन अफसर साहब, आप बताएं।
2: देखिए, असल में पहले ईदगाहें होती थी, और मुंशी प्रेमचंद की कहानी आपने पढ़ी होगी, ईदगाह।
1: जी
2: तो तकरीबन हर जिले में और हर तहसील में वो उसी तरह की ईदगाहें होती थी, जब नमाज पढ़ के
1: हैं ईदगाहें तो आज भी हैं।
2: नहीं है, लेकिन वो
1: बिल्कुल
2: मेले नहीं है, वो मेले
1: जी
2: ठेले कम हो चुके हैं,
1: जी
2: क्योंकि बहुत मटेरियलिस्टिक हो चुकी है कि दुनिया। तो अब वहाँ जाते थे हम लोग और वहाँ से चीज़ें खरीदते थे, और उसके बाद में सेवैयाँ खाते थे, पास पड़ोस में जाते थे। ईदी का, जैसा आपने फरमाया, ईदी का बहुत क्रेज़ था, और ईदी के लिए जो बच्चे कभी नहीं दिखाई दिए महल्ले के, पड़ोस के, वो भी आ जाते थे और उनको भी
1: बिल्कुल।
2: खुश किया जाता था। तो एक माहौल अच्छा था,
1: बचपन में ननिहाल ददिहाल का भी बड़ा एक क्रेज
2: बहुत
1: होता
2: रोल
1: था,
2: रहा है।
1: तो किस तरीके से आप लोग उस चीज को अभी भी याद कर रहे हैं?
2: खास करके बच्चे जो हैं वो ननिहाल को बहुत पसंद
1: जी
2: करते थे, क्योंकि माँ का इन्फ्लुएंस बच्चों पर ज़्यादा होता है, तो
1: जी
2: वो अपने भाइयों और अपनी
1: हाँ
2: माँ की तरह वो बच्चों को रागिब
1: हाँ
2: किया जाता है। तो ननिहाल में खास करके इन्हें, मैं अपने भी ननिहाल ही को पसंद करता था, तो बच्चे ननिहाल में ज़्यादा खुश होते थे, और क्योंकि उसकी उनकी माँ भी खुश होती थी और बच्चे
1: बचपन का
2: खुद भी
1: मजा
2: खुश होते
1: ननिहाल
2: थे।
1: में ज्यादा
2: हाँ, ननिहाल में
1: ज्यादा
2: ज़्यादा है, और
1: आता।
2: ददियाल में भी लोग जाते थे, सब कुछ
1: जी
2: था। लेकिन वो जो असली बात थी वो पास पड़ोस की बहुत थी, वो महल्ले की थी। और जैसे मैंने कहा कि ईदगाह जाना और सब चीज़ों को खरीदना और खिलौनों को खरीदना और वहाँ चीज़ों को खाना और वहाँ
1: जी
2: देखना, वो सब चीज़ें उनका हो गई हैं। अब बिल्कुल दुनिया दूसरी तरह की हो गई है गी।
1: सही फरमाया आपने कि त्योहार और सब चीजों का बचपन में अलग ही मजा होता है। एक सवाल जो रहा जा रहा है वो हुसैन अफसर साहब आपसे है, क्योंकि आप सहाफी भी हैं और उर्दू अदब से भी थोड़ी वाकफियत है। ये बताइए कि जो बचपन है उसको उर्दू अदब में किस तरीके से कितना जगह मिली हुई है और किन
2: बहुत किया
1: किन।
2: गया है। इस्माइल मेरिटी ने तो पूरा लिटरेचर इस उर्दू पर उनका
1: जी
2: था, उनका सारा काम ज़्यादातर तो उर्दू पर था, और उर्दू की जो नज़में थीं वो बच्चों को पढ़ाई जाती थीं और सिखाई जाती थीं और रटाई जाती थीं, और जिसकी वजह से वो उनमें एक अदब के लिए एक मोहब्बत पैदा होती थी और उनका स्टैंडर्ड बुलंद होता था। आप चूँकि उस लाइन से हैं तो आप बताइए कि आप बच्चे अब किस तरह से इंजॉय करते हैं उर्दू।
0: बच्चे हम बड़े बच्चों को पढ़ाते, छोटे बच्चों से साफ़ ही नहीं पड़ता है। तो बड़े बच्चे तो क्या भाई, हम अपने बच्चों को ये है कि छोटी छोटी जब सुबह उठाते हैं तो कुछ गुनगुना के ही उठाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारा वक्त था तो हमारी अम्मी हमको जब सुलाने से पहले कुछ दुआएं थी जो कहती थी पढ़ के सोना है, तो वो मतलब थोड़ा सा तरन्नुम में सुनाए रहती थी, तो हम लोग पढ़ते थे वही। हम थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ भी करते, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अब खत्म होती चली जा रही हैं। वक्त ही नहीं है लोगों के पास कि बच्चों से कुछ बैठ के बात करें या बच्चों को कुछ अपने कल्चर के बारे में, अपनी तहजीब के बारे में कुछ बात हो। वही है कि बच्चे अब पैदा होते हैं,
2: नहीं,
0: थोड़े दिन बाद ये होता है कि
2: वक्त तो है भी बहुत। देखिए, वक्त ज़्यादातर जो वालिदैन, जिसमें हम भी शामिल हो सकते हैं, वो खा जाता है, सोशल मीडिया खा
0: सोशल
2: जाता है।
0: मीडिया
2: तो
0: बिल्कुल
2: अब
0: सही।
2: बचपने में ये होता था कि लोरियां दी जाती थी, लोरियों से सुलाया जाता था बच्चों को, और लोरियों की वजह से उनको अल्फाज और लिटरेचर का एक एक रागिब होते थे
0: बिल्कुल,
2: वो।
0: उनके जहनों में वो चीज अल्फाज
2: अब
0: जैसे
2: वो नहीं है।
0: गूंजते
2: अब
0: थे।
2: या खाना खिलाना होता है बच्चों को, अब के बच्चों को, तो अंग्रेजी गाना या वो जो कार्टून्स वाले आते हैं वो किए जाते
0: बिल्कुल
2: हैं और
0: सही।
2: उनको भुलावे में डाल दिया जाता है कि तुम ये, और चमचों से माएं खिला रही हैंगी, तो मुश्किल हो जाएगा। और उसकी वजह जो सबसे ज़्यादा है वो है

0: सोशल मीडिया,
1: बिल्कुल
0: और सोशल मीडिया की वजह से बहुत बुराइयां आई हैं, जहां अच्छाइयां हैं वहां बुराइयां भी बहुत हैं, खास करके बचपने में, बचपने में जो आदत पड़ रही है सोशल मीडिया की, ये बहुत नुकसानदेह है।
1: बिल्कुल
2: तो बहुत अच्छी मालूमात आप लोगों से हासिल हुई और बड़ा मज़ा भी आया, और जो हमारी भी कई बचपन की यादें थीं वो ताज़ा हुई, तो बहुत अच्छा
0: कुछ
2: लगा
0: और
2: आप
0: भी अपनी
2: लोगों।
0: भी यादें में सुना दीजिए हम
2: हाँ,
0: लोगों को।
2: यादें ये हैं कि उस ज़माने में तो हम लोगों का, जैसे अभी बात चली कि ननिहाल और ददियाल की, तो हम लोगों का ज़्यादा क्रेज़ ननिहाल जाने का ही होता था। तो जो गर्मी की छुट्टियां हैं, आजकल बचपन ज़्यादा याद आता है, क्योंकि जब जून आता है तो जून में हमें सबसे ज़्यादा बचपन
0: गर्मियों की
2: याद
0: छुट्टियों
2: आता है।
0: में
2: गर्मियों की छुट्टी होती थी और ये इंतज़ार रहता था कि कब स्कूल की छुट्टी हो और हम लोग अपने ननिहाल जाएँ। तो वो यादें जो हैं वो ननिहाल की, वो गाँव, वहाँ के जो आम के बाग हैं और टीन हुआ करता था उस पर बड़ बड़ आम गिरते थे, तो वो आवाज़ें आज भी जब जून का मौसम होता है तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आज भी याद आती हैं। वो बाग में जाना, आम तोड़ना, वो एक बांस में लंबी एक वो बंधी होती थी, उसमें हम लोग आम को हिलाते थे, जो पक्का आम होता था वो उसमें
0: वो तो अब भी आप कर
2: गिरा।
0: सकते
2: अभी
0: हैं।
2: भी कर सकते हैं, लेकिन अब मौका कहाँ है, अब बचपन जो चला गया वो आ नहीं सकता, और अगर जाते भी तो हैं लेकिन अब वो मज़ा नहीं आता है। तो सामिन, ये कुछ हमारी बचपन की यादें थीं, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। आप लोगों का प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें भी आप लोगों ने बताई, जिनसे मालूमात भी हुई और बचपन की यादें भी हम लोगों की ताज़ा हुई। तो सामाइन, बचपन की दिलचस्प यादों पर आपने ये खसूसी गुफ्तगू समाप्त फरमाई। शरीके गुफ्तगू थे सीनियर सहाफ़ी जनाब हुसैन अफसर साहब और डॉक्टर नुजहत साहिबा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपनी राय से मुत्तला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमें अपने तासुरात भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामाइन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमेर को दे इजाज़त, आदाब।

0: अभी आपने सुना उर्दू कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये है आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये नगमा।

0: श्रोताओं, यहाँ हम लेते एक छोटा सा अंतराल, हम बस यू गए और यू आए।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय।

0: एकांश मुंबई ने ये राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016।

0: इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ है। आज आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू की उपस्थिति में ये पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
2: अब सिर्फ एक MOU से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। चेतावनी

0: बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IAM में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि तड़के करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। गाते गुनगुनाते स्वागत है आपका फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। आज है आपके सफर की हम सफर शिवानी। कहते हैं कपड़ों की चमक और घर की ऊंचाई पर मत जाना साहब। कपड़ों की चमक और घर की ऊंचाई पर मत जाना साहब। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले तो समझ जाना वो घर अमीरों का है। कितने खूबसूरत लाइंस हैं, है ना? दोस्तों, बड़ों का सम्मान करना एक मूलभूत मूल्य है जो विश्व भर की अनेक संस्कृतियों में गहराई से समाया हुआ है। ये पिछली पीढ़ियों के ज्ञान, अनुभव और योगदान को स्वीकार करने का प्रतीक है और सामाजिक एकता और सद्भाव का आधार स्तंभ है। बड़ों का आदर करना महज एक सामाजिक शिष्टाचार नहीं है, ये सांस्कृतिक परंपराओं और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित एक नैतिक अनिवार्यता है। अनेक समाजों में बड़ों को ज्ञान और बुद्धि का भंडार माना जाता है, क्योंकि उनके जीवन भर के अनुभव ने उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को समृद्ध किया है, जिसका लाभ हमें भी मिलता है ना? दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ चलिए एक

बड़ों के प्रति आदर दिखाकर हम पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करते हैं, जिससे समुदायों को आपस में जोड़ने वाले बंधन और भी मजबूत होते हैं, है ना? इसके अलावा बड़ों का सम्मान करना पारंपरिकता और अंतर पीढ़ीगत एकजुटता के मूलभूत सिद्धांतों को भी दर्शाता है। जिस प्रकार बड़ों ने युवा पीढ़ियों की देखभाल और मार्गदर्शन किया है, उसी प्रकार युवाओं का भी ये दायित्व है कि वे अपने बड़ों के वृद्धावस्था में उनका साथ दें और सम्मान करें। ये पारस्परिक संबंध पीढ़ियों के बीच निरंतरता और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे समाज का ताना बाना मजबूत होता है, है ना? चलिए इसी बात पर एक प्यारा सा गाना सुनते हैं अपने फिल्म से। इसके बाद शिवानी आपको एक बहुत खूबसूरत सी कहानी भी सुनाएगी। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

हाँ जी, तो गाना कैसा लगा? बहुत अच्छा था ना? बिल्कुल दिल को छूने वाला। तो शिबानी ने आपको इस गाने से पहले एक वादा किया था कि वो आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाएगी। तो कहानी कुछ ऐसे थी, एक गांव था, उसका नाम था सिग्नापुर। उस गांव में काशी नाम का एक बढ़ई यानी कारपेंटर रहता था। वो अपने 5 साल के बेटे वासु और अपने बूढ़े पिता रामू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। काशी के पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे, जिसके कारण उनके हाथ पैर कांपते थे और उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। काशी अक्सर अपने पिता के बूढ़े होने और काम न कर पाने के कारण उन्हें चिढ़ाता था और चिढ़ता भी था। उन पर गुस्सा भी करता था। वो भूल गया था कि आज वो जो कुछ भी है अपने पिता के बदौलत ही है।

तो एक शाम पूरा परिवार रात का खाना खाने के लिए मेज पर बैठा था। बूढ़े दादाजी के कांपते हाथों के कारण मिट्टी की थाली उनके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरकर टूट गई, जिससे सारा खाना फर्श पर बिखर गया। ये देखकर काशी गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपने पिता को बहुत बुरा भला सुनाया और चिल्लाते हुए कहा, अगर आपने अगली बार कोई बर्तन तोड़ा तो आपको इस घर में खाना नहीं मिलेगा और आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। बूढ़े पिता ने सिर झुका लिया और बिना कुछ बोले चुपचाप रोने लगे। अगले दिन काशी ने अपने पिता को कोने में बैठकर खाने के लिए एक सस्ती मिट्टी की प्लेट दे दी। शाम को जब काशी काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसका छोटा बेटा वासु फर्श पर बैठकर लकड़ी के एक टुकड़े को छील रहा था। काशी ने प्यार से उससे पूछा, बेटा तुम ये क्या करना बना रहे हो? वासु ने बहुत ही मासूमियत के साथ जवाब दिया, पापा जब आपके मम्मी आप और मम्मी पापा के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको इसमें खाना दे सकूंगा और बर्तन टूटने पर आपको

हाँ जी, तो कैसा लगा गाना? अच्छा था ना? ये गाना था जो जीता वो सिकंदर, वही सिकंदर उस फिल्म से। हाँ जी, तो बेटे की बात समझ आते ही काशी तुरंत अपने बूढ़े पिता के पास गया, उनके पैर छुए और रोते हुए अपनी गलती की माफी मांगने लगा। उस दिन के बाद से काशी ने अपने पिता की सेवा और सम्मान करना शुरू कर दिया और पूरा परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगा। अगर हम इस कहानी को देखें समझें तो यहाँ पर एक सीख मिलती है कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। हम अपने बड़ों और माता पिताओं के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, हमारे बच्चे भी हमसे वही सीखते हैं और भविष्य में भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। बड़ों का सम्मान करना और उनकी देखभाल करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। बड़ों का सम्मान करने से व्यक्तिगत स्तर पर भी अनेक लाभ मिलते हैं। बड़ों की बुद्धिमत्ता और सलाह को सुनकर व्यक्ति बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्राप्त कर सकता है, जो उसे जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक समझदारी से दृढ़ता के साथ करने में सहायक होते हैं।

यादों की बारात इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। मित्रों, बड़ों के पास अक्सर पारिवारिक इतिहास, सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन के अनुभव का भंडार होता है जो युवा पीढ़ी के जीवन को समृद्ध कर सकता है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
3: मित्रों, बड़ों के प्रति आदर दिखाने से धैर्य, सहानुभूति और विनम्रता जैसे गुण विकसित होते हैं। इसके लिए व्यक्ति को अपने अहंकार और विचारों को एक तरफ रखकर दूसरों के अनुभवों और दृष्टिकोणों को ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है। सक्रिय श्रवण

और सहानुभूति का ये अभ्यास न केवल पारस्परिक संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि व्यक्तिगत विकास और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में भी योगदान देता है।

बड़ों का आदर करना एक शाश्वत मूल्य है मित्रों, जो पीढ़ियों के बीच आपसी समझ, सहानुभूति और एकजुटता को बढ़ावा देता है। बड़ों के ज्ञान और योगदान का सम्मान करके व्यक्ति और समुदाय एक अधिक दयालु और समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं हम, जहां उम्र या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी को महत्व और सम्मान दिया जाता है ना?

0: अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म से अभी आप आवाज़ें सुन रहे थे उदित नारायण और आदित्य नारायण की। श्रोता, यहाँ हमने एक छोटा सा अंतराल।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते अब समाप्त होता है। ये फिल्म थी फिर वही कहानी याद आई, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज थी, संगीत था अनु मलिक का। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। कांग्रेस सदस्यों, अमरीकी सीनेटर और बड़ी अमरीकी कंपनियों के अधिकारियों ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। वारबर्ग पिंक्स के चेयरमैन चार्ल्स आर, प्रतिनिधि फ्रेंच हिल, प्रतिनिधि ब्रेड शर्मन, सीनेटर सिंडी हाइट स्मिथ और सिस्को के जीतू पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात

0: करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से युद्ध विराम को पूरी तरह लागू करने तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आग्रह किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में हुई प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप से स्वदेश वापसी के समय तबीयत खराब होने के बाद उन्हें नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल करके मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: नेटवर्क आकाश
1: लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब से कुछ ही देर में।
3: कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक,
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
1: श्रोताओं, लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में आज के कलाकार हैं छेदी यादव और साथी

श्रोताओं, अभी आपने छेदी यादव और साथियों के आवाज़ में लोकगीत सुना बिदसिया, और अब आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में एक किसानी गीत।

0: बस भूली गई ले सुधिया हमारे हो विदेशिया, भूली गई ले सुधिया हमारे हो विदेशिया, भूली गई ले सुधिया हमारे हो विदेशिया।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: और चार राम में

0: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
1: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
0: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
1: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरयार।
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
3: छेदी यादव और साथियों की आवाज में आप आनंद ले रहे हैं लोकगीतों का, और अब आइए आपको सुनवाते हैं एक सोहर।

0: छेदी यादव और साथियों की आवाज़ में अभी आप लोकगीतों का आनंद ले रहे थे और इसी के साथ लोक रंग ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत का प्रोग्राम गीतांजलि अब से कुछ ही देर में।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है जब हैरी मेट सीजल फिल्म से। प्रीतम के संगीतबद्ध किए इस गाने को आवाज़ दिया अरिजीत सिंह ने और गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

हैरी मेट सेजल से हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी. अगला गाना हमने लिया है श्रोताओं फिल्म अनजाना अनजानी से. इस गाने के लिरिसिस्ट हैं विशाल ददलानी, म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर और आवाज़ दी है विशाल ददलानी शिल्पा राव ने.

श्रोताओं, अनजाना अनजानी इस फिल्म के गाने के बाद हमने अगला ट्रैक लिया है कुर्बान फिल्म से, आवाज़ सलीम सुलेमान और सलीम मर्चेंट की, म्यूज़िक कंपोज़र सलीम सुलेमान और गाने के बोल लिखे हैं इरफान सिद्दीकी ने। ये गीत आपके रेडियो सेट पर हमारे स्टूडियो से।

कबीर सिंह फिल्म का ये गाना था जिसे लिखा था कुमार ने, आवाज़ अखिल सचदेवा और तुलसी कुमार की, और म्यूज़िक कंपोज़र अखिल सचदेवा। श्रोताओं, अगला गाना हमने लिया है लाल सिंह चड्ढा फिल्म से, म्यूज़िक कंपोज़र प्रीतम, लिरिसिस्ट अमिताभ भट्टाचार्य, वोकल्स बाय अरिजीत सिंह, शिल्पा राव।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी नगमा हमने लिया है मिक्की वायरस इस फिल्म से।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने मिकी वायरस फिल्म से ये गाना सुना, जिसे लिखा था और म्यूज़िक दिया था हनीफ शेख ने। इसी गाने के साथ श्रोताओं, फिल्म संगीत का प्रोग्राम गीतांजलि यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी गोरखपुर है, आइए सुनते हैं प्रायोजित प्रोग्राम उमंग, NCERT नई दिल्ली की प्रस्तुति।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
3: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
4: हर पल चलती जाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
4: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
4: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
4: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
4: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
4: घर को खूब सजाती चींटी,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
4: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
4: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
4: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
4: काम बड़े करके दिखलाती,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
4: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
4: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: हमको यही सिखाती चींटी,
4: हमको यही सिखाती चींटी।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गाँव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: यार जादुई पिटारा क्या
1: जादुई पिटारा।
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित प्रोग्राम उमंग, NCERT नई दिल्ली की प्रस्तुति। ये आकाशवाणी गोरखपुर है। गाने सुहाने, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब से कुछ ही देर में।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
8: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
9: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
10: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
9: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
10: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
9: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
10: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
9: For details, log on to www.ddindia.com।
5: फिल्म संगीत के प्रोग्राम गाने सुहाने में मैं श्वेता आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। श्रोता, हम ऑल इंडिया रेडियो के 90 शानदार साल मना रहे हैं। इस महीने की 8 तारीख को 90 साल पूरे हुए हैं। इस सफर में हमने संगीत, यादों और आवाज का एक ऐसा सफर तय किया जो हमारे देश को एक सूत्र में बांधे हुए है।

जी हाँ बिल्कुल श्रोताओं, मुझे भी कुछ कहना है आपसे, वो ये कि ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, अगर आकाशवाणी हमारे साथ ना होता। श्रोताओं, आज भी सुबह 5:50 पर मैं रेडियो ट्यून करती हूँ और रेडियो पर सिग्नेचर ट्यून से ही मेरा दिन शुरू होता है। अभी हमने हद कर दी, आपने फिल्म से कार्यक्रम का पहला गाना सुना, और अब आइए सुनते हैं ज़मीन आसमान, इस फिल्म से ये गाना।

ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल साउंड कल्चर और कनेक्शन का सेलिब्रेशन, छोटी शुरुआत से लेकर देश की आवाज बनने तक श्रोताओं AIR पीढ़ियों से गूंजता रहा है। ये हर घर में एक भरोसेमंद साथी रहा है। इसके साथ हमारे घर 100 दिए जल उठते हैं, गमों की शामें क्या होती हैं आकाशवाणी के साथ वो भी कट जाती हैं। 1967 में आई बहारों के सपने इस फिल्म से प्रोग्राम का अगला गाना आपके लिए हमारे रेडियो सेट से।

1967 में आई बहारों के सपने, इस फिल्म से अभी आपने ये गाना सुना। AIR का सफर श्रोताओं देश की बदलती नब्ज को दिखाता है। आज़ादी से लेकर आज के ज़माने तक इसने लाखों लोगों को जानकारी दी है, पढ़ाया है और उनका मनोरंजन किया है। इसकी विरासत आज भी ब्रॉडकास्टर्स को प्रेरणा देती है। श्रोताओं, इसके नाम के दीवाने आकाशवाणी की दिल की आवाज़ पहचान ही लेते हैं। अगला गाना हमने लिया है सूरज और चंदा फिल्म से,

सूरज और चंदा, इस फिल्म से भी आपने ये गाना सुना। श्रोताओं, जब हम आकाशवाणी के 90 साल मना रहे हैं तो माइक्रोफोन के पीछे की आवाज़ और इसे मतलब देने वाले और सुनने वालों का हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और इसके बिना तो हम मर ही मिटेंगे। थोड़ा फिल्मी हो गया, पर अगले गाने के बोल तो आपको पता ही चल गए होंगे। फिल्म है यारा दिलदारा।

0: श्रोताओं, ये सफ़र उसी जुनून और मकसद के साथ जारी है। ऑल इंडिया रेडियो अभी भी गूंज रहा है, अभी भी जुड़ रहा है। सुनते रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि संगीत और यादें कभी खत्म नहीं होती। यारा दिलदारा इस फिल्म के गाने के साथ गाने सुहाने ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम मैंने यानी श्वेता ने प्रस्तुत किया। यह आकाशवाणी गोरखपुर है, सुगम संगीत। ये प्रोग्राम अब से कुछ ही देर में।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, B-Pharma, M-Pharma और D-Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: सुगम संगीत के आज के प्रोग्राम में आइए सुनते हैं चंदन दास को, जो कह रहे हैं, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गाना आइए सुनते हैं गुलाम अली की आवाज में। इस गीत के लिए अहमद फराज का एक शेर अर्ज करती हूँ कि हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे।

गुलाम अली की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। इसी के साथ लाइट म्यूजिक का प्रोग्राम सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी गोरखपुर है। इलाकाई खबरों के लिए आइए चलते हैं लखनऊ स्टूडियो।

0: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत पहली बार 28 रियासतों और 5 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुंतज़मीन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहड़ी ने कहा कि नीति आयोग ने मीटिंग के दौरान वज़राए आला के दूरंदेश तबसरों और उनकी रियासतों में किए गए कामों से फ़ायदा उठाया। खिदमत, गुड गवर्नेंस और लगन को वक्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खिदमत के 12 बरस मुकम्मल होने के ज़िम्न में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस वक्त लोकभवन में मीडिया से खिताब कर रहे हैं। इससे कबल कल उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक रियासत में भी हर शहरी को बाइख्तियार बनाने को तरक्की की बुनियाद बनाकर एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में फ़ाल किरदार अदा कर रही है।
1: नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात प्रदेश में मौसम जनित मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। उन्होंने वज्रपात से होने वाली जनधन हानि की रोकथाम के लिए प्रदेश में एक डेडिकेटेड सैटेलाइट उपलब्ध कराने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में एक एक एम्स स्थापित किए जाने के साथ ग्रेटर नोएडा में एक समर्पित रोबोटिक्स क्लस्टर विकसित करने, आंगनबाड़ी भवन निर्माण की निर्धारित लागत का पुनरीक्षण किए जाने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रीमियम राशि को बढ़ाने समेत अन्य मांगों को नीति आयोग के समक्ष रखा और इन्हें पूरा किए जाने की मांग की। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नोएडा इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उभरा है, यहाँ माहौलियात के मुताबिक ट्रांसपोर्ट लाजमी है। वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौतम बुद्ध नगर में UPSRTC की 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने और नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का इफ्तिताह करने के मौके पर बोल रहे थे। गौरतलब है कि जेवर वाक़े नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली तक में 15 जून से ई सिटी बसें चलाई जाएंगी। प्रोजेक्ट के तहत 510 बसें चलाई जाएंगी, लेकिन पहले मरहले में सिर्फ 110 सिटी बसें चलेंगी। इसके बाद 100 ई सिटी बसें वज़ीर आला ई सिटी बस स्कीम के तहत 4 से 5 महीने में दस्तियाब कराई जाएंगी। गुज़िश्ता 12 बरसों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर भारत में काबिल ज़िक्र तरक्की हुई है। हुकूमत की जानिब से गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए उठाए गए इकदामात पर पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: मरकजी हुकूमत ने साइबर मुजरिमों की तरफ से सिक्योरिटी सिस्टम और मालियाती ढांचे को लाहक बढ़ते हुए खतरे के बारे में एक अलर्ट जारी किया है। वजारत दाखिला के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक साइबर मुजरिम माली और जाती फ्रॉड के लिए AI से चलने वाली डीप फेक वीडियोज का तेजी से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वह अपना बायोमेट्रिक डेटा महफूज रखें, मशकूक लॉगिन की कोशिशों से चौकन्ना रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या SMS नोटिफिकेशन की बाकायदगी से निगरानी करें। उनसे ये भी कहा गया है कि वह नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी मशकूक मालियाती लेनदेन की इत्तला फौरी तौर पर दें। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर आज लखनऊ में महकमा मेहनत और रोजगार एक खसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद चाइल्ड लेबर के खात्मे के बारे में अवामी बेदारी को बढ़ाना और माशरे के बच्चों को तालीम, तहफ़ और मजमू तरक्की के हकूक के बारे में आगाह करना है। प्रोग्राम में तकरीबन 800 शुरा की शिरकत मुतव है। कल रियासत के अक्सर जिलों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ अच्छी बारिश देखने को मिली, जिससे आवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली। अमरोहा में कल रात से मूसलाधार बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि पीलीभीत जिले में भी रात से सुबह तक बारिश जारी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में लखनऊ समेत रियासत के बेशतर अजला में दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सखियां अपना कार्यक्रम सुनेंगी नारी जगत अपनी प्यारी सखी रंजना मिश्रा के साथ।
4: नारी जगत सुनने वाली सभी बहनों को रंजना का नमस्कार। मैनो आज के समय में ज़्यादातर महिलाएं कामकाजी हैं, वो घर संभालने के साथ साथ ऑफिस की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही हैं और ये तभी संभव है जब वो अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं उन्हें अपनाएंगी, क्योंकि ये अधिकार रोजगार के अवसर से लेकर वेतन, मातृत्व लाभ और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा तक सुनिश्चित करते हैं। बहनों, कार्यस्थल पर प्रमुख कानूनी अधिकारों की बात करें तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत समान या एक जैसे काम के लिए महिला और पुरुष कर्मचारी को एक समान वेतन मिलना अनिवार्य है। वेतन, पदोन्नति या भर्ती में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। साथी बहनों, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 हर महिला को सुरक्षित माहौल देता है। इसके अंतर्गत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले हर संस्थान में एक आंतरिक शिकायत समिति का होना अनिवार्य है। और बहनों, आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं और ये तभी संभव हुआ जब इन्हें सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में नियोजित होने का अधिकार मिला। हालांकि उनकी सहमति के बिना उन्हें 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम पर नहीं लगाया जा सकता। यदि उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करना होता है तो नियोक्ताओं को उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा और परिवहन सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए। और बहनों, अब बात करते हैं क्रैच की सुविधा की। तो भाई, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम के अनुसार जिन संस्थानों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो वहाँ महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए क्रैच की सुविधा होना भी अनिवार्य है, ताकि आप निश्चिंत होकर अपने कार्य पर ध्यान दे सकें। सचमुच बहनों, बच्चों के साथ ऑफिस संभालना एक माँ के लिए आसान नहीं होता। और भाई, उस समय तो और भी कठिन हो जाता है जब आपकी गुड़िया जिद पकड़ ले और रूठ जाए।

बेनो, इस गीत के बाद आइए बात करते हैं मातृत्व अवकाश के लाभ की। क्योंकि बहनों, किसी भी कामकाजी महिला जो कि गर्भवती हैं, उन्हें मातृत्व अवकाश की अनुमति है। भारत में मातृत्व अवकाश के नए नियम 2017 में लागू हुए, जिसके अंतर्गत संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। इन नए नियम के तहत महिला को प्रसव की तिथि से पहले 6 सप्ताह की छुट्टी लेने की भी अनुमति है। मैंने भारत में कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने में मातृत्व अवकाश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उन्हें काम की जिम्मेदारियों से कुछ कीमती समय की छुट्टी देता है, ताकि वे अपने नवजात शिशु के साथ घुल मिल सकें और उसकी देखभाल कर सकें। मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2017 के अनुसार महिला कर्मचारी अब 26 सप्ताह के सवेतन मातृत्व अवकाश की हकदार हैं, जो पहले 12 सप्ताह के अवकाश से अधिक हैं। इस ऐतिहासिक सुधार का उद्देश्य कामकाजी माताओं को प्रसव के बाद शारीरिक और भावनात्मक रूप से सहायता प्रदान करना है। ये उन्हें नौकरी की सुरक्षा बनाए रखते हुए अपने बच्चे की शुरुआती विकास संबंधी ज़रूरतों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। बहनों, ये मातृत्व अवकाश ये समय होता है उस एहसास को महसूस करने का, जो कि माँ के लिए सबसे अनमोल होते हैं। फिर चाहे वो बच्चों को खिलाना हो या फिर उन्हें लोरी से सुलाना हो।

है कि हम टाइम मैनेजमेंट करें, घर के अन्य सदस्यों से भी मदद लें, घर में ऑफिस के काम को बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि बहनों घर में शांति और तनावमुक्त माहौल का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप फिर से ऊर्जावान होकर अगले दिन काम पर जा सकें। और बहनों इसके लिए ज़रूरी है कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। तनाव कम करने के लिए हर दिन योग, ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें। अपनी प्राथमिकताओं को समझे समझते हुए काम करें। खुद पर अपराध बोध ना हावी होने दें, क्योंकि बहनों वर्क लाइफ बैलेंस कोई एक बार की हासिल की जाने वाली चीज़ नहीं होती, बल्कि निरंतर एक प्रक्रिया है जो कि हम सभी महिलाओं को तनाव मुक्त रहने और कार्य क्षमता में मदद करता है बढ़ाने में। और बहनों हर कामकाजी महिला के लिए नौकरी के साथ साथ घर परिवार और खुद के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर नामुमकिन नहीं होता। बस आज के समय के अनुसार कुछ नियम बनाने होते हैं खुद के लिए, जैसे सुबह जल्दी उठकर या रात को अगले दिन की योजना बनाकर समय बचाएं, घर के काम में पतिदेव और बच्चों से भी मदद लें, ग्रोसरी या घरेलू सामान की ऑनलाइन खरीदारी करें, इससे भी समय बचता है। साथ ही बहनों रोजाना कम से कम 30 मिनट का समय अपने पसंदीदा शौक जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना या टहलने के लिए समय निकालें। और बहनों घर पर होने का मतलब ये भी तो नहीं होता ना कि आप हर समय काम करें। अपने काम के घंटे खत्म होने के बाद कंप्यूटर लैपटॉप बिल्कुल बंद कर दें। साथ ही ऑफिस की चिंता घर में ना लाएं और घर की चिंता ऑफिस में भी ना लाएं। और बहनों ये भी ज़रूरी है कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद आपकी नींद भी पूरी हो, तो बस सोते समय सारी चिंताओं को भुलाकर मीठी यादों में खो जाया करिए, ताकि मीठी नींद के साथ साथ सपने भी मीठे आएं। फिलहाल चलिए सुनते हैं ये मीठा सा गीत फिल्म राजा हिंदुस्तानी से।

बहनों, गर्मी का मौसम है और इसमें सबसे ज़्यादा राहत पानी और शरबत से ही मिलती है। और अक्सर घर में शाम के चाय की जगह लोग आम का पन्ना, बेल का शरबत और नींबू शिकंजी पीना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इससे ताज़गी तो आती ही है, साथ ही ये सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए बहनों, आज हम बनाते हैं सौंफ का शरबत। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम मोटी वाली सौंफ, 8 से 10 इलायची, 1/4 कप खसखस, 1 चम्मच काली मिर्च, 400 ग्राम मिश्री धागे वाले। इन सबको हल्के आंच पर, इसमें से मिश्री हम अलग कर लें और सबको हल्के आंच पे हल्का सा रोस्ट करें, फिर ठंडा कर लें, फिर लास्ट में इसमें खसखस और काली मिर्च भी मिला दें। फिर सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में बारीक पाउडर बना लें। अगर पीसने में दिक्कत हो तो छान कर फिर से पीस लें। अब इस पाउडर को किसी एयरटाइट डब्बे में बनाकर रख लें, तो फिर आप जब चाहें तब इस शरबत को बना सकती हैं। ये प्रीमिक्स आपके हर समय काम आएगा। तो बहनों, इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक दूध में मिलाकर ठंडे जैसे और दूसरा पानी में शरबत की तरह। दूध में बनाने के लिए हम 1/2 लीटर ठंडे दूध में इस प्रीमिक्स में से 4 स्पून लेकर के और पानी में डाल दें। फिर चाहें तो इसमें भिगोए हुए सब्जा के बीज भी डाल सकते हैं और फिर इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। चाहें तो सूखी गुलाब की पंखुड़ियों से भी इसे सजा सकते हैं, इसमें पीस भी सकते हैं आप, और इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पानी में बनाने के लिए 1/2 लीटर पानी में 1/2 कटोरी प्रीमिक्स, थोड़ा सा काला नमक, नींबू रस, भुना हुआ जीरा और डालकर इसे इसमें मिला लें। और बहनों, खट्टा मीठा जो इसका स्वाद होता है ना, ये बहुत ही बढ़िया आता है, और साथ में सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, खुद भी पीजिएगा, घर में आए हुए मेहमान को भी ज़रूर दीजिएगा। और अब इस शरबत के बाद आइए सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना।

0: बहनों, इस गीत के साथ और इतनी सारी बातों के साथ ही समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को रंजना का नमस्कार।
1: अभी सखियां अपना कार्यक्रम सुन रही थी नारी जगत रंजना मिश्रा के साथ। ये आकाशवाणी गोरखपुर है।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
4: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
3: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
4: स्वच्छता की आदत स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
7: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
8: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
8: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
8: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
7: For details log on to www.ddindia.com।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। श्रोताओं, खेती किसानी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर भानु प्रकाश राम और श्री विनय कुमार की बातचीत। विषय है आम की सघन बागवानी हेतु प्रजातियां।
1: किसान भाई, जमीन धीरे धीरे कम होत बा, खेती के साथ साथ बारी बगीचा जरूरी बा, लेकिन हमन का अक्सर ये देखेली जा कि एक तो बागवानी कैला पर पौधा दूर दूर लगावे के पड़ेला आ हर साल या साल भर के अंदर उसे उपज नहीं प्राप्त होला। लेकिन हमार कृषि वैज्ञानिक लोग ऐसन भी तकनीकी खोज लेले हूँ कि अगर आम का सघन बागवानी कैल जा तो जल्दी उत्पादन मिली आ कम क्षेत्रफल में ज्यादा बाग लगावल जा सकेला। आज हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ल हैं डॉक्टर भानु प्रकाश राम। आप हैं संयुक्त निदेशक औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका फोन लाइन से जुड़ला खातिर स्वागत बा। ये बताएं कि आम के सघन बागवानी खातिर उपयुक्त प्रजाति और उनके लगावला का तरीका का है।
2: देखिए, आम के लिए लगाने के लिए ये है कि आजकल जयपुर से जो हम जो ट्रेडिशनल रूप से जो है 10x10 मीटर लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन तापमान पर क्यों देखते हुए जमीन की होल्डिंग कम हो रही है तो उसको देखते हुए हम 3x3 या 4x4 मीटर का जो है आम की बागवानी हम कर सकते हैं, जिसमें से छोटा ट्रैक्टर जो जिसको गार्डियन ट्रैक्टर बोलते हैं 15 से 20 HP आता है, उससे आसानी से जुताई हो सके तो उसको 3x3 या 4x4 मीटर की दूरी पर हम आम की बागवानी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए जो है मुख्य रूप से जो प्रजाति है हमारी पूर्व से वो आम्रपाली है, अरुणिमा है, अरुणिका है, पूसा पीताम्बरा है, पूसा सूर्या है, पूसा श्रेष्ठा है, नीलम भी है। ये पुरानी प्रजाति है जो ये बौनिक किस्म की जो प्रजातियां हैं इन सबको जो है सघन बागवानी में कर सकते हैं। इसमें कटाई छटाई कम कर सकता पड़ती है। हम जो है दस्तरी लंगड़ा का भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कटाई छटाई ज्यादा कमी पड़ती है, किसान भाई उतना टेक्निक नहीं कर पाते हैं। लेकिन आसानी से जो बौनिक किस्म की है आमों का हम आसानी से जो है बागवानी कर सकते।
1: ये जौन प्रजाति बतौली है इनका गुण का है, पहले तैयार होली बाद में होली या उपज का मिलेला अलगौला के कितना दिन बाद हालत में आ जाए।
2: ये सब कलमी पौधे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है नई दिल्ली से निकाली हुई है सब। इससे जो है और CIS लखनऊ है उससे निकल गई है, जम्बिका है और अरुणिका है। तो इन प्रजातियों को भी ये है कि ये हर साल फलत में आती है। सेब आम में जो है एक साल आता है एक साल नहीं आता है, अल्टरनेट बेयरिंग होती है, लेकिन इन प्रजातियों में जो नई किस्में हैं ये इनमें जो है वह हर साल फलत में आती हैं और किसान भाई को आसानी से अच्छी उपज मिल जाती है। क्योंकि बढ़वार कम है फलत ज़्यादा है तो उनके लिए सबसे उपयुक्त है। और कोई भी कलमी पौधा जो है हमारा तीसरे साल से जो फल देना शुरू कर देता है तो इनमें जो है कोई दिक्कत नहीं होती। 3x3 मीटर पर आराम से जो है 50-60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद करके उसमें आधी सड़ी खाद आधी मिट्टी मिला के भराई कर दें, तत्पश्च जो एक डोस होती है गड्ढा बढ़ जाता है, तब जो है आप जो है इसमें पौधों पेड़ लगा सकते हैं। पौधे जो 1 से 2 साल के बीच का पौधा वो सबसे उत्तम होता लगाने का।
1: डॉक्टर साहब, पूर्वांचल में ई प्रजात आपका जो शोध संस्थान बा ओकर शाखा बा ओकर संस्थान का जगह बा कहाँ मिल सकेले?
2: ये सब जो है हमारे औद्यानिक प्रयोग प्रशिक्षण बस्ती में, सहारनपुर में, मलियाबाद में, यहाँ से आपको मिल सकता है। और आगे जो है जो संस्थान है आपका कृषि बागवानी संस्थान केंद्र की केंद्रीय कृषि बागवानी संस्थान रामानखेड़ा में, वहाँ से आपका जो है अंबिका और अरुणिका वहाँ से मिल जाएगा और इन संस्थानों में मिल जाएगा।
1: जौन प्रजाति है सघन बागवानी खातिर एकर विशेषता का है, जैसे फल के या वो में कोनो खास बात बा ताकि तैयार होके तो बाजार में जल्दी बिक जाए?
2: हाँ, ये जितनी प्रजातियां हैं यहाँ जो बताया गया है ये सभी जो है मीडियम लेट से लेके लेट हैं, यानी मध्य देर से लेके देर में आती हैं, जो जुलाई से लेकर अगस्त तक में फल लगते हैं। तो बाजार में इसका फल आ जाता है जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में जो है आपका फल आ जाता है और हर साल फल आती है। इनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। उस समय बाजार में फल कम रहते हैं, दशहरी की समय जल्दी खत्म हो जाती है, लंगड़ा भी खत्म हो जाता है, तो चौसा जब आता है उस समय इनकी फलत आती है, तो उस समय हमको बाजार भाव मिल जाता है और एक खाने में अच्छी, इनका मार्केट दर भी अच्छा है और स्वाद में भी आपका जो है अच्छा है और आभा युक्त कलर युक्त ये सब वैरायटियां हैं और ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी उपयोग।
1: जौन व्यवसायिक प्रजाति है, चाहे चौसा होखे, दशहरी होखे, लंगड़ा होखे, गौरजीत होखे, ओकले तुलना में अगर प्रति इकाई देखल जाए जैसे एक हेक्टेयर में, तो उत्पादन के दृष्टिकोण से ये छोट छोट पौधा रही, लेकिन पौधा की संख्या ज्यादा रही, तो ओमे तो कोनो नुकसान होके वाला नहीं बा?
2: नहीं, इसमें यह है कि छोटे छोटे पौधे हैं, तो आजकल जैसे बड़े पौधे हैं उसमें फ्रूट फ्लाई लग जाती है बरसात में, उसमें काले धब्बे आते हैं जिसका हमें दाम जो है बाजार में मिलता है, लेकिन इनमें जो है जब छोटी प्रजाति की हैं इनमें हम जो है कल्चर क्रियाएं आसानी से कर लेंगे। फलों में जब मैच्योरिटी आती है, जब गुठली पड़ जाती है, तो 15 मई के बाद में जो है जब फलों का विकास होता है, तो उस समय जो है जब देखते मैच्योरिटी आ रही है तो उससे पहले फ्रूट फ्लाई जो है डंग मार देती है, आंखें दे देती है, तो उसमें लार्वा निकल आते हैं जिससे फल गुणवत्ता खराब होती है और उसका मार्केट में कोई दाम नहीं मिलता है। तो इस हिसाब से यदि हम सघन बोनिंग करते हैं, कम दूरी पर लगाते हैं, पौधे छोटे रखते हैं, तो उसमें जो है फलत भी अच्छी होती है, आराम से पेड़ जो है हमको जो है 20 से 25 किलो आसानी से मिल जाता है शुरुआत में ही, और तुरी पर लगाते हैं तो हमको एकड़ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको फलत अच्छी मिल जाती है और इनको जो आसानी से हम बैगिंग कर सकते हैं, आसानी से दवा का छिड़काव कर सकते हैं, बैगिंग कर देते हैं तो फ्रूट फ्लाई नहीं लग पाती है, जिससे फल जो होती है मक्खी वो डंग मार देती है, उसमें लार्वा निकल आते हैं, तो उससे आम खड़ा जाता है, तो उसको हम आसानी से बैगिंग, आजकल हम लोग बैगिंग का विशेष प्रयोग कर रहे हैं, तो किसान भाई आसानी से बैग लगा सकते हैं, उनका जो है बाजार में दाम जो अच्छे आमतौर से किसान भाई जो है 50 रुपये किलो आम बेचते हैं, ये हमारा 100 से 125 रुपये जो है प्रति किलो के हिसाब से जो आसानी से बिकता है बाजार में।
1: डॉक्टर साहब एक बात और बता दें कि ये कुल प्रजात का पौधा लाइन से लगावे के पड़ी या अलग अलग चौकोर खाना बना के अलग अलग ब्लॉक में लगावे के पड़ी कि अल्टरनेट एक के पास दूसरा, कोना से लगावल जा कि परागण बढ़िया होके और फलत बढ़िया होके?
2: अब जो प्रजातियां बताई गई हैं इनमें से कम से कम जो है जो लगाते हैं किसी एक का उसमें जो है स्पेशल प्रजाति कोई और लगा लें, चूंकि सभी लेट हैं, सबकी कल्चर क्रिया एक साथ होती है, दवा के साथ भी एक करते, तो मीडियम लेट से लेट हैं, तो इसमें जो है आप सबको यानी आप चाहे एक एक लाइन लगा लें या बीच में एक आध लाइन दूसरे एक लाइन लगा दें मुख्य दूसरी लाइन या दो तीन लाइन के बाद में जो एक लाइन दूसरे का लगा दें, प्रजाति का मुख्य प्रजाति एक रखिए, दूसरा लाइन लगा दीजिए, तीसरे लाइन लगा दीजिए, तो इसमें पॉलिनेशन भी अच्छा होगा और समय से हम दवा छिड़काव भी कर सकते हैं। अक्सर किसान भाइयों का ये आता है कि एक साथ बौर नहीं जाता है तो दवा छिड़काव करते हैं तो हम छिड़काव करने में दिक्कत होती है, कोई किसी में बौर आ गया है, फूल खिल गया, किसी में नहीं खिला है तो फिर बाद में खिलता है, तो उस समय तो लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें लगभग एक साथ खिलते हैं, बस 2-4 दिन का अंतर होता है, तो एक साथ दवा का हम छिड़काव भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं होती है।
1: डॉक्टर भानु प्रकाश राम, संयुक्त निदेशक औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर, आप फोन लाइन से जुड़ के इतना बढ़िया जानकारी दिहली कि सघन बागवानी करे खातिर आम का कौन कौन प्रजाति है, ओकर गुणवत्ता का है, ओकर उत्पादन क्षमता का है और कितना फायदेमंद बा किसान भाई लोगन खातिर, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: अभी आपने डॉक्टर भानु प्रकाश राम और श्री विनय कुमार की बातचीत सुनी। विषय था आम की सघन बागवानी हेतु प्रजातियां। श्रोताओं, इसी के साथ खेती किसानी ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

केंद्र सरकार के निर्माण की राज्य में अब इंजन

0: के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
3: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कैनेडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कैनेडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को

संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: महानुभावहरू, आज हो 12 तारिक जुन। के तपाईँलाई थाहा छ आजको दिन किन महत्त्वपूर्ण छ भने? नमस्कार, नेपाली प्रसारण सेवाको विशेष कार्यक्रम विश्वमामीको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ अनि यसघरी तपाईँको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता निर्मल गुरुङ लिएर कार्यक्रम विश्वमा हामी।
1: है नन्ही सी उमर मेरी, फिर भी बोझ उठाता हूँ, अखबार बेच लेता हूँ पर हाथ नहीं फैलाता हूँ, अगर कभी हाथ फैला भी तो उसके पीछे की मजबूरी नहीं जताता हूँ। है नन्ही सी उमर मेरी, फिर भी बोझ उठाता हूँ, क्या मेरा भी कोई सपना है? इन सवालों में खो जाता हूँ, क्योंकि कलम पकड़ने की उम्र में मैं खेतों में कुदाल चलाता हूँ, बड़ा होने से पहले ही मैं बड़ा हो जाता हूँ। इन छोटी उंगलियों से बारूद भर दिवाली के जश्न का अहम हिस्सा बन जाता हूँ, नुक्कड़ की चाय की टपरी पर झूठे प्याले उठाता हूँ, टेबल साफ करने से लेकर जूते साफ करने तक का साथ निभाता हूँ। है नन्ही सी उम्र मेरी, फिर भी बोझ उठाता हूँ, हो सके तो मेरा कुछ काम कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं बस स्कूल की दो कलमें दो किताबें मेरे नाम कर देना, हो सकता है तुम्हारा ऐसा करने से बाल मजदूरी का नाम हट जाए, कल की अखबार में बाल मजदूरी का कोई नाम ना आए।
0: श्रोता महानुभावहरू, आज हो 12 तारिक जुन। विशेष गरी आजको दिनको बारेमा भन्न पर्दा, आजको दिन अर्थात् प्रत्येक वर्षको 12 तारिक जुनमा बाल श्रम विरुद्धको विश्व दिवसको रूपमा मनाइन्छ। यसको सुरुवात अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अथवा आइएलओ इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनद्वारा सन् 2002 गरिएको थियो, जसले बाल श्रमको विश्वव्यापी विस्तार र यसलाई उन्मूलन गर्न आवश्यक प्रयासहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में दिन के 4 बजे हैं। हमारी आज की यह सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर

उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली। लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई, लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
1: कोई जरूरत नहीं है।
0: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
1: नहीं।
0: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो।
1: नहीं।
0: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
1: पक्का ना?
0: हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे।
1: तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
0: क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती।
1: पर बताना तो पड़ेगा ना?
0: पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू।
1: प्रेम?
0: ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है,
1: देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा।
1: तुम जानते हो मेरी हालत।
0: तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा।
1: मुझे डर लगता है प्रेम।
0: क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए।
1: हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ।
0: प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे।
1: अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा।
0: तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्म आ जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली। अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहनकर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो, क्या मैं कर दूँ मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो, अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ, मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ, मुझे खुले बाल पसंद हैं। अच्छा बाबा, जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले।
तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी, और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना में हिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले, लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा, लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही, लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया, लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो। नहीं तो खूबसूरत हो तुम, वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक

भी बना कर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूं कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदाबांदी रुक गई थी लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। 2 दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई ना कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

उस रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ भी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी, पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने के भक्तों के सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री शाह ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वे नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरतों का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए थे। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 21 जून तक नई दिल्ली में BSF मुख्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आपसी तालमेल वाली गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सुधार और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सम्मेलन में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अगले चरण में ऊर्जा की मांग में वृद्धि पर चर्चा होगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1695 अंक के उछाल के साथ 75,528 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: ना मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: अपने रेडियो सेट के वॉल्यूम को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूँ आपका दोस्त शिवांश लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हमेशा की तरह अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार के साथ किया जाए। दोस्तों, कठिनाइयाँ जीवन की परीक्षा हैं, इनसे घबराना नहीं बल्कि इनसे सीखना चाहिए। अर्थात दोस्तों, कठिनाइयाँ हमें रोकने नहीं बल्कि निखारने आती हैं। चुनौतियाँ हमारी क्षमता,

फेंकने से बचना है, निर्धारित डस्टबिन में डालना है और अपने आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के लिए जागरूक करना है। दोस्तों, विद्यालयों और सामाजिक संस्थानों का भी इसमें महत्व बढ़ जाता है। उनको समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत, आइए अपन चलते हैं बातचीत की दुनिया में। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे FDDI के बारे में। FDDI यानी फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। दोस्तों यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक प्रमुख

शैक्षिक संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। दोस्तों, आज FDDI देश के प्रतिष्ठित डिज़ाइन एवं प्रबंधन संस्थानों में गिना जाता है और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा भी प्राप्त है। FDDI का मुख्य उद्देश्य युवाओं को फुटवियर, फैशन डिज़ाइन, लेदर प्रोडक्ट्स, रिलेट एवं फैशन मैनचेस्टर जैसी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। दोस्तों, यह संस्था केवल शिक्षा ही नहीं देती बल्कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल मानव संसाधन भी तैयार करती है। आज FDDI के देश भर में अनेक आधुनिक परिसर संचालित होते हैं, जिसमें आप नोएडा, रायबरेली, हैदराबाद, पटना, कोलकाता, चेन्नई, रोहतक और जोधपुर सहित कई शहर इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इन परिसरों में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, स्मार्ट कक्षाएं हैं, डिज़ाइन जो स्टूडियो हैं, साथ ही पुस्तकालय और छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही साथ दोस्तों, वर्तमान समय में फैशन और डिज़ाइन उद्योग तेज़ी से विकास कर रहा है। ऐसे में FDDI युवाओं को रचनात्मकता, नवाचार और व्यवसायिक कौशल का ऐसा संगम प्रदान करता है जिससे वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले जो छात्र होते हैं वो देश विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों में भी कार्य कर रहे हैं और अनेक छात्र तो स्वयं के उद्यम भी शुरू कर चुके हैं, स्थापित कर चुके हैं। दोस्तों, FDDI में फुटवियर डिज़ाइन और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फैशन डिज़ाइनर, लेदर लाइफस्टाइल और प्रोजेक्ट डिज़ाइन के साथ साथ रिलेट और रिटेल और फैशन जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे उद्योग की वास्तविक चुनौतियों का सामना कर सकें। आज जब भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब FDDI जैसे संस्थान देश के युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। यह संस्थान भारतीय फुटवियर और फैशन उद्योग की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी FDDI यानी फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में। अगर आपको भी इसमें जाना है तो इसके बारे में और जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। आइए, इन्हीं बातों के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
3: आइए संतराल के बाद पुनः चलते हैं बातचीत की दुनिया की तरफ। दोस्तों आज है 12 जून और आज पूरे विश्व में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर अर्थात बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस हमें उन लाखों बच्चों की पीड़ा और उनका संघर्ष याद दिलाता है जो खेल कूद, पढ़ाई लिखाई और अपने सपने को साकार करने की इस उम्र में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। दोस्तों इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है तथा बच्चों को उनके अधिकारों को दिलाना, यही उद्देश्य है। दोस्तों बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनके भीतर भविष्य के वैज्ञानिक छुपे हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, सैनिक, कलाकार और आने वाले लीडर्स भी हैं। यदि उन्हें उचित शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण ना मिले तो फिर उनका जीवन तो व्यर्थ है। जब कोई बच्चा कम उम्र में ही श्रम करने के लिए मजबूर हो जाता है तो उसका बचपन, शिक्षा और उसका उज्जवल भविष्य बहुत प्रभावित होता है। बाल श्रम की समस्या के पीछे कई कारण हैं दोस्तों, जिसे हमें समझना होगा। इसके पीछे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी, ये प्रमुख कारण हैं। अनेक परिवार जो हैं वो आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को काम स्कूल नहीं भेजते हैं और काम करने पे वो बच्चे मजबूर हो जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अनाथ होते हैं या कठिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मजदूरी करने के लिए विवश होते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारा और इस पूरे समाज के साथ साथ सरकार द्वारा भी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की भी जाती है और भी जोरदार तरीके से इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए ताकि हर बच्चा आगे बढ़े, हर बच्चा पढ़ाई कर सके। जब एक बच्चा विद्यालय जाता है तो केवल उसका ही नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य उज्जवल होता है, उसके पूरे समाज के साथ साथ उसके परिवार का भविष्य भी उज्जवल बनता है। इसीलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे के हाथ में किताब हो, ना कि मजदूरी का बोझ। आइनी बातों के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

दोस्तों इस गीत के बाद आइए पुनः चलते हैं बातचीत की तरफ। आपको तो पता ही है मेरे पास बातें बहुत होती हैं करने को, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी है, समय हो चुका है जाने का। जाने से पहले आइए नज़र डाल लेते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। दोस्तों कल पूछा गया प्रश्न ये था कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। हमेशा की तरह इसका उत्तर आपको अगले दिन मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। दोस्तों आज का प्रश्न है कि कौन सी पर्वतमाला यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा मानी जाती है। हमेशा की तरह इसका उत्तर आपको कल मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: पंचो
1: जय हिंद
0: भैया। देखा ये नारा के साथ अपन बैठ के शुरू भइल
1: बिल्कुल।
0: और आज है भैया 12 जून। अब 12 जून के जानतर भैया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप जैसे काम करे तो सबके अच्छा है
1: बिल्कुल,
0: लेकिन ई होला लइकन के जोन काम कैदे खातिर अपन इवन रोक लगा
1: जाए।
0: लेकिन के उम्र बा भाई पढ़े लिखे अपन
1: बिल्कुल
0: कर कुछ नया सीखे पढ़ा लिखा पे ध्यान दे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे, खेले कूदे
1: बिल्कुल।
0: मजबूरी बस जैसे मान लो भाई अपन गरीबी बाटे।

0: मैरिज गरी बा ऐसने सब स्थिति में अपन होला का लैके लोगन बाटे उनसे बाल श्रम अपन श्रम करावे खातिर कोनो काम न शुरू कर दे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो लैकन के जोन बाटे आज जोन बाटे 12 जून के बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनावल जाला। एकर आज जोन बाटे की सबसे पहले जोन 2002 में एकर शुरुआत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से शुरू भइल।
1: बिल्कुल।
0: कि जो बाल श्रम बा ए पर रोक लगाओ जरूरी बाटे। एकर मुख्य उद्देश्य यह बा कि लइकन के अपन शिक्षा स्वास्थ्य खेले कूदे के नई जानकारी खातिर उनके प्रेरित कर जा। और आज के दिन जागरूकता फैले के नाते एक दिन आप मैंने आज के दिन अपन बाटे बाल श्रम निषेध दिवस।
1: बिल्कुल भैया सही कहला है। जब लड़के छोट रहे तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास जौन है ये बहुत जरूरी होला। और अगर एक कुल के दरकिनार कर दिहल जा और उनके उत्पादन के काम में लगा दिहल जा, जैसे फैक्ट्री में काम में कहीं लगा दिहल गई, कोनो कारखाना में लगा दिहल गई,
0: खतरनाक जगह पर
1: बिल्कुल। और एक साथ साथ देखा खतरनाक जगह के बाद भैया कहले तू पटाखा उद्योग ऐसा होला, कालीन उद्योग ऐसा बा, एमे होला कि भाई लैकन के लगा दिहल जा तो उनके मजदूरी कम देवे पड़ी और उत्पादन लगभग उतना हो। तो ऐसे जे भी नियोक्ता बा ओकर तलाब हो जाला, लेकिन जकरे ऊपर पड़ जाला काम ओकरे खातिर बहुत भारी हो जाला।
0: भैया शुरू में अगर मान लग अपन श्रम करे लगे मजदूरी करे लगे तो उनका पढ़ाई लिखाई सब बाधित हो गए।
1: बिल्कुल।
0: आगे उन्हें कुछ कैसे करना।
1: बिल्कुल सही कहा भैया। जैसे कभी कभी ऐसा होला कि कुछ मजबूरी आ गई, कोनो समस्या आ गई या कोनो बहुत विकट परिस्थिति आ गई तो वह में लड़का लोग काम कर शुरू कर देना है। भाई घर परिवार के जिम्मेदारी बचपन में ही आ गई सर पर, तो ऐसे मजबूरी हो जाले, लेकिन ओकरे भी रोकले के नियम बा।
0: सही कहा भैया, ओकर भी निषेध कर जरूरी बात है। ओकर बात से अपन सरकार के माध्यम से भाई ऐसा कोई स्थिति आता तो विशेष सहायता सुविधा मिल सके। लेकिन आज के दिन जो बा मुख्य रूप से यह बा कि भैया बाल श्रम जो बा ए पर अपन हर हाल में
1: रोक लगे चाहिए। सही कहा भैया। और एकरे खातिर भैया देख जागरूक रहल बहुत जरूरी बा। बहुत सारे लोग ऐसा ना भाई कहीं जाता टे देख लड़का बच्चा काम करता टे तो कई लोग जे जागरूक होला ते पूछ भी लेलक बाबू तू काम करता टे पढ़बो लिखबो करल कि खाली ये काम करता टे। तो कई जगह ऐसा भी बात सामने आवेले कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के लेके छिटपुट काम कर शुरू कर दिया बाटे। स्थिति भैया ठीक नहीं है। जैसे होटल भइल ढाबा भइल या तरह कोनो छोटा मोटा दुकान भइल बहुत सारा प्रतिष्ठान बा ना, तो एमे भैया लइकन के कम मजदूरी पर ही लोग रख ले लें।
0: सही कहा।
1: तो जे रखता भैया तेहू के जागरूक रहे पड़ी और जेकर लैके रखा दाटे तेके भी जागरूक रहे पड़ी।
0: सही कहा भैया।
1: और समाज के हर लोगन के जागरूक रहे पड़ी कि भाई बालिक भैले के पहले केहू के काम पर या जबरदस्ती श्रम उनसे न करावल जाए।
0: सही कहा भैया। यही एक नाते आज के दिन बाटे विश्व स्तर पर जागरूकता फैलावल जाला कि बाल श्रम पर हर हाल में रोक लगावल जरूरी बा। भैया देखे इस तरह अपन चर्चा हम चाहते नहीं अपने पंच भाई के एक झलकी सुन जा। नामकरण संस्था अपन झलकी बाटे अपने पंच भाई सुना।
2: जिंदगी बहुत कीमती है
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक,
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुँचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
7: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे डब्ल्यू।

0: अबे कौन आ मरा सुबह सुबह?
1: अरे मैंने नामधारी जी है।
0: अरे ओ ठन ठन ठन ठन आओ। अरे यार बड़े मौकर पर आए।
2: मैंने कही अकेले अकेले मिठाई खा रहे हो बेटे।
0: मिठाई
2: यार ये किस खुशी की मिठाई है? अभी ये हमने बाहर ये बोर्ड देखा नामकरण संस्था, ये क्या फ्रॉड है
0: भैया? ठन ठन उसी की मिठाई है। हाँ उसी की। अच्छा? मैंने ये नामकरण संस्था खोली है, आज उसी का श्री गणेश है।
2: काला जाऊ
0: खा यार, काला खा अपनी खा
2: रहा है। मुबारक हो मुबारक हो। मगर एक बात है गुरु, ये नामकरण संस्था का धंधा खोलने की तुझे सूझी कैसी?
0: लल्लू मैं भैया, जब इंसान इस संसार में प्रवेश करता है तो उसकी जरूरत होती है नाम की, हैं? और आज की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए ये बहुत जरूरी हो गया है कि नाम रखने के लिए किसी की सहायता ली जाए।
2: इसी बात पर रसगुल्ला का
0: अबे यार रस बहुत टपक रहा है। तो मैं कह रहा था कि आप किसी भी स्कूल कॉलेज या दफ्तर में जाएं तो आपको एक नाम की कई प्राणी मिलेंगे।
2: अरे पूछो ना।
0: और हैरानी नहीं, ठन ठन जो उनके पिताओं के नाम भी एक दूसरे के पिताओं से मिल जाए।
2: अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
0: बिल्कुल ठीक है। तो इसी परेशानी से बचने के लिए ये संस्था मैंने खोली, यानी का इसका निर्माण हुआ है।
2: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या काम किया।
0: और फिर तुम ही ले लो यार, ठन ठन तुम्हारा नाम गोपाल है।
2: गोपाल
0: यानी गोपाल
2: है जी।
0: लानत है ये नाम है तुम्हारा। मेरा मतलब कि तुमने कहा था, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे नाम के बहुत से आदमी तुम्हारे ऑफिस में काम करते हैं।
2: यार तीन गोपाल तो मेरे कमरे में बैठते हैं और चार गोपाल बाहर वाले कमरे में।
0: हो गए ना तीन, तेरा नौ दो ग्यारह।
2: यार यानी गलती कोई कर गोपाल करता और डांट मुझे पड़ जाता।
0: भैया जब नसीब में हो जूते तो क्या करेंगे नपूते। तो मैंने तुम्हें बता रहा था कि मैंने तुम्हें सुझाव भी दिया था कि तुम अपने नाम के आगे ठन ठन लगा लो, यानी कि तुम यानी कि ठन ठन गोपाल। अब कभी भूल हुई?
2: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: अरे मैं कहता हूँ किसी से नाम मिलने का संयोग भी नहीं
2: हो, सवाल ही नहीं पैदा होता है जी। अच्छा तो भैया जी बहुत बहुत मुबारक है जी, लड्डू की भी और ये रसगुल्ले की भी और नामकरण संस्था की भी। अच्छा तो मैं अभी जरा काम से जा रहा हूँ, लौटती बिल्लिया फिर आऊंगा।
0: अच्छा
2: की
0: अच्छा ठन ठन गोपाल। यार तो आदमी बड़ा अच्छा है। चला गया साले, दो रसगुल्ले खा के तुम्हें। अबे ओ चेला राम
3: जी साहब।
0: अबे जी साहब जाए धरा जल्दी, तूने बाहर का बोर्ड उलटा है नहीं कि हम अंदर हैं या नहीं?
3: जी साहब।
0: जी साहब हर बात में जी साहब, अरे कोई लंबी बात करा कर। सुन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया, लगता है कि परिवार नियोजन वाले बहुत तरक्की पर हैं। और हाँ अगर अब कोई आए तो उनको बाहर बेंच पर खड़ा कर देना, मेरा मतलब है कि बेंच पर बैठा देना और कहना कि पंडित जी बहुत बिजी हैं। क्या कहेगा?
3: जी साहब।
0: क्या कहेगा?
3: पंडित जी बहुत बिजी।
0: अबे तो मरे हुए क्या बोल रहे हैं, जोर से बोल कि पंडित जी बहुत बिजी हैं। हाँ।
3: पंडित जी बहुत बिजी हैं।
0: हाँ। और सबसे पहले फीस ले लेना, फिर एक एक करके अंदर भेजना, समझे?
3: जी साहब।
0: अबे केला, अबे केला
3: राम जी दो मिनट में अभी फारिग होते हैं, जरा दो मिनट ठहरिए।
0: हाँ बुला भाई, पहले कौन आ रहे हैं? बुरा
3: आइए जी।
4: पंडित जी नमस्ते।
0: हाँ हम नहीं समझते, बैठो बोलो क्या बात है?
4: वो मैं अपने लड़के का नाम रखवाने आया हूँ।
0: हाँ तो नाम रखवाने आए हो तो यार शर्मा क्यों रहे हो, है आराम से बैठो। आपका नाम?
4: जी जर्मनी लाल।
0: वाह वाह वाह वाह, आपके पिताजी का शुभ नाम।
4: जी पिताजी का शुभ नाम। जी वलायती राम।
0: अरे सबके सब इम्पोर्टेड है
4: जी।
0: कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आप इस लड़के का नाम वेस्ट जर्मनी लाल रख दें, इससे एक फायदा और रहेगा कि ज्योग्राफी की याद भी रहेगी और आपका ब्रांड भी
4: है। वेस्ट जर्मनी लाल।
0: हाँ?
4: नाम तो नया है।
0: हाँ?
4: मगर कुछ अंग्रेजी तर्ज का है।
0: अंग्रेजी तर्ज का है। अरे तो भाई एक बात बताओ कि आपके लड़के का मैन्युफैक्चर, मेरा मतलब है कि इसका जन्म कब हुआ?
4: जन्म 11:45 सेकंड।
0: भैया मैं मेरा मतलब ये अर्थमेटिक से नहीं है, मौसम से है, मौसम से।
4: जी बरसात थी।
0: ये बात है ना, बरसाती लाल लगते हैं, इससे बच्चे को पैदाइशी मौसम भी याद रहेगा और बरसाती से रक्षा भी रहेगी।
4: जी ठीक है ठीक है, बरसाती लाल ही रख दे, मगर दूसरे लड़के का नाम
0: दूसरा
4: अच्छा सा रख दें। घर में एक ही मौसम के नाम होंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सबके सब तकरीबन बरसात में ही हुए हैं और अगला भी बरसात में ही होने वाला है।
0: हाँ तो आप किस किस्म का नाम चाहते हैं
4: जी? क्या मतलब?
0: मतलब ये कि आप किन चीजों के नामों पर नाम चाहते हैं? फूलों के नाम पर, फलों के नाम पर, सब्जियों के नाम पर, रंगों, ऊनी सूती कपड़ों के, या जानवरों के नाम पर, या गिनतियों के नामों पर, या शहरों के नामों पर, गाँव कस्बे, किस प्रकार के नाम चाहते हैं आप? हाजी साहब बहुत से नाम है मेरे जनरल स्टोर में, आपको जो पसंद आए आप बता दें।
4: जी मैं क्या बताऊँ, जो आप समझे रख दें।
0: जी आप समझे रख दें। अच्छा खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जरा कुछ नाम सुनिए। ऊनी सूती है?
4: ऊनी सूती
0: हाँ मैं बताता हूँ। हाँ तो ये है मलमल सिंह, मखमल प्रसाद, जद्दर सिंह, ऊनी लाल, सूती राम, रेशमी लाल, कंबक्त इमरान, कंबल कुमार। रंगों के नाम सुनिए, सुनिए, सुनिए,
4: सुनाइए।
0: जैसे गुलाब चंद, लाल चंद, हरी राम, पीताम्बर लाल, श्यामा प्रसाद, कालू राम। आप शहरों पर सुनिए, गांव पर सुनिए। पहले गांव सुनिए, खेड़ा राम, लखनऊ प्रसाद, गया प्रसाद, बिहारी लाल, दिल्ली राम। आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं?
4: सुन रहा हूं, सुन रहा।
0: तो नहीं तो आप ऐसे कीजिए, ईश्वर संबंधी कुछ नाम, जैसे श्यामा प्रसाद, हरी राम, जय गोपाल, इस तरह के नाम और भी हैं। और इससे एक फायदा और भी होगा
5: कि भगवान का सुमरण भी रहेगा।
4: ठीक है ठीक है ठीक।
0: अगर वो फीस जमा करा देना बाहर। ऐसा कीजिए आपको कुछ फूलों और फलों के ऊपर मैं नाम और बताता हूँ।
4: जी हाँ बताइए।
0: फीस देने से पहले सुनिए।
4: जी हाँ।
0: अंगूरी लाल, शीर चंद, संतरा प्रसाद, बेरी लाल। फूलों पर सुनिए, फूलों पर। जैसे गेंदा मल, चमेली राम, गुलाब चंद। और अब खेतों पर सुनिए, खेलों पर सुनिए, खेतों में बाद में बताऊंगा। हॉकी चंद,
4: हॉकी चंद,
0: क्रिकेट प्रसाद, छक्का, फुटबॉल सिंह। और प्राकृतिक नाम सुनिए। बौखला जाता हूँ ना। अगर आप चाहें जैसे चांद कुमार, सूरज प्रकाश, तारा चंद, आजकल तारे डूबे हुए हैं।
4: संतरा प्रसाद ठीक रहेगा, उसको संतरा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी ये लीजिए अपनी फीस।
0: साहब मैं फीस नहीं देता हूँ, आप बाहर जमा कराइए। अबे ओ चेला राम, जी साहब। हाँ हुजूर के बच्चे की क्या झगड़ा है?
6: साहब एक औरत आई है।
0: अच्छा,
6: वो अपने बच्चे का नाम रखवाने के लिए आपके पास आना चाहती है।
0: तो ठीक है, अगर लेडी है तो लेडी फर्स्ट भेजो उसको। हाँ जी बुलाइए।
7: कहा नाम आप ही रखा था?
0: नाम आप ही रखा था जी। हाँ मनवाइए।
7: हमें अपने लड़का को नाम रखवाना है।
0: हाँ।
7: तो कोई अच्छा सा नाम बता दो।
0: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
7: अरे भैया सुनो तो सही, हमारा जो लल्ला है वो बहुत शर्मात है।
0: हाँ।
7: और बहुत सीधा साधो है।
0: वो तो आपकी शक्ल देखे पता लग रहा है कि जब माँ ऐसी तो बेटा भी ऐसा होगा। ठीक है, सुंदर है तो सुंदर लाल, झेपू है तो झेपू लाल, और भोला है तो भोला राम।
7: ना भाई, हमको जो तो नाम पसंद नहीं आओ, तो अच्छा सा नाम बताओ।
0: अच्छा से लीजिए तो फिर आप सब्जी और जानवर पर नाम
7: सुनिए। हमारा लल्ला तुम्हें जानवर नजर आवत है?
0: वो मुगाल तो हो गया था जरा आपको देखे। वैसे बात ये ऐसी बात नहीं है, मैं केवल नामों की बात कर रहा हूँ। आप चाहे तो क्या कहते हैं, गिनती पर नाम रख सकती है, जैसे सैकड़ा राम, हजारी लाल, लखपति सिंह, पिचित्र सिंह, क्षेत्र सिंह,
7: नाम बताओ जो कुछ नाम होते।
0: दशमरी पसंद नहीं आया तो आप सब्जियों पर सुनिए, जैसे प्याज सिंह, मटरू लाल, भिंडी प्रसाद, तुरई राम, मूली चंद, टमाटर सिंह, आलू राम, कद्दू का
7: कद्दू राम, जो कुछ नाम होता है। मैं कुछ और नाम नहीं आवत
0: है। आराम से बात करो ना, तो फिर सुनिए जानवरों पर। गेंडा राम, मेरा मतलब कुछ नहीं कही, मेरा मतलब है कि चीता राम, शेर सिंह, हाथी लाल, रख दे कुछ भी रख दे।
7: यही तुमने खोली है भाई नामकरण संस्था, कोई अच्छा नाम नहीं है तुम्हारे?
0: अरे बाबा आपसे भी अच्छे अच्छे नाम है। आप तो ऐसे करिए, आप ऐसा करिए, आप सुंदरी, आप अपने लड़के का नाम सुंदर लाल रख दे।
7: लल्ला है ही, तुमने कहा कह दे।
0: सुनिए ऐसा कीजिए, आप सुंदर रख दीजिए और आप फीस जमा करा दीजिए।
7: कहा गई फीस? कैसी फीस? हमारा बेटा जब सुंदर है तो हम भाई सुंदर लाल कहेंगे? मामे तुमने कहा बात बता दी, बहुत महंगा नाम रखा तो। चार शब्द बताया था।
0: हरियो हरियो हरियो गजगामी। अरे सुना लगा गई मुझे। अरे मोटी
8: बजाना किबला,
0: आइए आइए तशरीफ रखिए, कहिए कैसे तकलीफ की?
8: क्या बताएं सरकार, नाम की है हमें भी दरकार।
0: क्या मतलब, आपको भी नाम रखवाना है? यानी कि आप अब तक बेनाम हैं?
8: ना तो हम बेनाम हैं, दुख है कि बस गुमनाम है।
0: हाँ
8: सर का नाम दामोदर है और बंदा एक शायर है। बात दरअसल ये है कि मुझे नाम की नहीं नाम की जरूरत है, यानी तखल्लुस। तखल्लुस एक बढ़िया सा तखल्लुस फरमा दे।
0: तो आप अपना तखल्लुस चाहते हैं, यानी आप खालिस दिल्ली की चीज हैं।
8: खालिस दरीबा कला।
0: दरीबा कला, तो तुम ऐसा करो मिस्टर दरीबा कला जी, तुम ऐसा करो कि तुम दुम दहलवी, ठूंठ दहलवी या डंगर दहलवी।
8: क्या बात पैदा की है, क्या बात पैदा की है, दामोदर से तुम यानी दुम, वो भी दिल्ली की।
0: कोई बात
8: दामोदर दुम दहलवी, ठीक ठीक, बेहद बहुत बहुत बहुत पसंद आया, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया
0: शुक्रिया खालिया जी।
8: और पीस के मेरी ये ताजा गजल पेश खिदमत है। आप अपने नाम से छपवा लीजिएगा, 20-25 रुपए मिल जाएंगे। आदाब
0: आदाब। अबे क्या कर गए, ये कौन सी गजल देगी, क्या लिखा है, कहते हैं कि गालिब का अंदाजे बयां, और अबे अबे गालिब की गजल मेरे नाम से देगी। अबे
6: साहब, एक साहब और इंतजार कर रहे हैं।
0: तो उनको भी अंदर ले आ यार, अब पौनी पौनी हो गई।
9: तो आप है नामदारी चंद?
10: जी हाँ, मैं हूँ रामदारी चंद, बोलिए।
9: मुझे अपने बच्चे का नाम रखवाना है। मेरे नाम आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ।
0: अगर आप सोचेंगे तो फिर मेरे सोचने की क्या जरूरत है।
9: ठीक है, फिर आप सोचिए, मैं सोता हूँ।
0: तुम सोते हो, मैं रोता हूँ। मैंने कहा भाई साहब ठहरिए ठहरिए ठहरिए, वैसे आपका जो बच्चा है वो किस वक्त यानी के कौन से महीने में पैदा हुआ था?
9: मैं आपका मतलब नहीं समझा।
0: अरे देखिए साहब, अगर जनवरी में पैदा हुआ है तो जनवरी लाल, फरवरी चंद, मार्च प्रसाद, अप्रैल सिंह, मई जून, जो भी है।
9: नहीं नहीं, मुझे महीनों पर नाम नहीं रखवाना।
0: तो फिर हफ्तों और दिनों पर सुनिए, जैसे सोमानंद, मंगल प्रसाद, बुद्ध चंद, गुरुदयाल, शुक्र सिंह, शनिचर देव।
9: मेरा बच्चा इतवार को हुआ।
0: इतवार को तो छुट्टी थी।
9: क्या
0: एक्सटेम्पर कैसे हो गया? कुछ नहीं, ऐसा करो उसका नाम इतवारी लाल रख दो।
9: नहीं, मैं सोच रहा था इसका नाम अनोखी लाल रख दूं।
0: क्या कहा? अनोखे? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए, क्या काम करते हैं?
9: मेरा नाम झरोखे लाल है। मैं बदमाशों के दिमाग के झरोखे खोल देता हूँ, यानी पुलिस।
11: कहाँ भागने लगे पुलिस का नाम सुनकर?
0: कहीं नहीं। आप देखिए, मैंने अब नामकरण संस्था बंद कर दी है, आप कहीं और जाके अपना नाम रखवा लीजिए।
11: मगर हम तो आपका नामकरण करने आए हैं, अनोखे लाल उर्फ नामधारी चंद। झरोखे लाल, पकड़ा इसे।
0: क्या मतलब?
11: मतलब भी समझाना पड़ेगा क्या? क्यों हथकड़ी प्रसाद, डंडा राम, हवाला चंद, ये नाम कैसे लगेंगे? बोलो तुम्हारा कौन सा नाम रखें? इनमें से कोई नाम पसंद ना हो तो थाना प्रसाद ठीक रहेगा।
12: इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, ये क्या हंगामा?
11: ये एक फरार मुजरिम है, इसका नाम अनोखे लाल है। बहुत से धोखाधड़ी, जालसाजी के सिलसिले में पुलिस को इसकी तलाश थी। इससे पहले भी ये काम दिलाऊ संस्थाएं खोल चुका है और लोगों को नौकरी दिलाने के बहाने लूटता रहा है। हमारे पास भी इतनी इत्तलाई, हमने अपना आदमी झरोखे लाल इसके पास भेजा। ये अपना असली नाम और पुलिस का नाम सुनकर हड़बड़ा गया।
0: अच्छा,
11: तो हमारा शक विश्वास से बदल गया।
0: ठीक है,
11: ये नाम बदल कर और भेष बदल कर बहुत से जुर्म कर चुका है।
0: अच्छा,
11: चलो थाने।
0: ठंडन, मेरी जमानत करा ले।
12: अबे लड्डू गोपाल, अब तो तू जा उधर।
11: अबे मियाने की जरूरत नहीं, समझे? बात दिनों बाद हाथ लगे हो बेटा।

0: मेरे हर पल चंदन का एहसास।
1: हाँ पंच भाई, अभी सुनत रही आप लोग झलकी नामकरण संस्था, इतना बढ़िया झलकी आप सुनिए। देखल जा भैया, अब कहा जल ना, अपने जीवन के स्वस्थ रखे खातिर अपन सब सबसे बढ़िया जन उपाय बाटे योग।
2: बिल्कुल,
1: अगर योग से कर जा, प्राचीन युग से ही अपने देश के अपन इतना बढ़िया अपन रहा है, योग के बल पे अपन आदमी स्वस्थ शरीर,
2: बिल्कुल
1: बहुत निरोगी काया अपन रहा बहुत दिन तक।
2: सही कहा भैया, शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे। कहल भी गेल भैया ना, योग चित्त वृत्ति निरोधा, कहले के मतलब ये बा भैया कि तुम्हारे मन के जितना चंचलता बा और मन के जौन भी समस्या बा या शरीर नहीं, ई मन पर भी केंद्रित है और मन के जितना भी समस्या बा वो सबके खत्म कर देला, वो सबके समन कर देला। और ई कहल जा कि भैया आत्मा से परमात्मा के जोड़ले के प्रयास करला। और सही अर्थ कर देखल जा भैया तो जौन शरीर बा और मन बा और आत्मा बा, शरीर यही तीनों पर आधारित है। और अगर एकर पूर्ण विकास करे बा तो योग का सहारा जरूर लेवे पड़ी।
1: सही कहा
2: भैया, आजकल तो सभी जानता प्रचलन में भी बा कि लोग ध्यान कर ले ताटे, कुछ ऐसा क्रिया करत आटे, कुछ ऐसा काम करत आटे जौने से उनका शरीर आत्मा और मन ये तीनों धीरे धीरे स्वस्थ होत बा।
1: तो भैया स्वस्थ जीवन के आधार योग है।
2: बिल्कुल,
1: ये कि अपनावल जा और साथ ही सुनल जाए एक ठो लोग।

0: हाँ भैया देखो, जयचंद सिंह की आवाज़ में इतना बढ़िया लोकगीत अपन पंचमय सुनना, और यही के साथ अपने कार्यक्रम का समय पूरा होता चले के
1: पंचों
0: पंचों जय
1: जय हिंद।
0: हिंद।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी एवं हिंदी में क्षेत्रीय समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एगो सोशल मीडिया पोस्ट में कहले हमे कि सरकार पछिला 12 बरिस में महिला लोगिन के राष्ट्र निर्माण में उनकर पुरहर क्षमता के एहसास करावे बदे अनुकूल वातावरण तैयार कैले हवे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों के सेवा का 12 बरिस पूरा भइले के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में मीडिया के साथ संवाद कैले। एह मौका पे वहाँ के सरकार के उपलब्धियन का जिक्र करत कहनी कि पछिला 12 साल में उत्तर प्रदेश आस्था आ आर्थिकी का एगो अद्भुत संगम बनल हो। वहाँ के कहनी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी लीडरशिप के नाते ई संभव भइल बा। पछिला 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी अगुवाई में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आ सबका प्रयास के सिद्धांतन के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति भइल हो। विदेश नीति के जरिया से भारत के वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कैले के दिशा में सरकार का उठावल गैल कदमन के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट।
2: दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार खुदरा पेट्रोल पंपन से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकन के ईंधन खरीदले पर रोक लगा देले हो। सरकार कहले हवे कि इनके अपने जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रन से लेवे के होई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एगो अधिसूचना में कहलस कि प्रतिबंध 90 दिन ले लागू रही। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA 21 जून के होखे वाले नीट UG पुनर्परीक्षा के परीक्षा अवधि के 15 मिनट बढ़ा के 195 मिनट कह दिले हो। ये परीक्षा दोपहरिया 2 बजे से संझा 5:15 बजे ले हुई। एगो रिपोर्ट।
2: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गोरखपुर के सतही प्रदेश के कई गो पूर्वी जिलन में आज दिन में लोग एक बार फिर से उमस भरल गर्मी महसूस कैले। हालांकि मौसम विभाग एह इलाकन में अजो कुछ जगहिन पर वहीं बिहने कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़ले क संभावना जतौले हवे। विभाग के ओर से एह दौरान कहीं कहीं बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेरियो चलले क चेतावनी जारी कैल गैल बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों की सेवा के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मीडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में उत्तर प्रदेश आस्था और आर्थिकी का एक अद्भुत संगम बना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी लीडरशिप के कारण ही यह संभव हो पाया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एक रिपोर्ट।
2: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में आज दिन में लोगों ने एक बार फिर उमस भरी गर्मी महसूस की। हालांकि मौसम विभाग ने इस अंचल में आज भी कुछ स्थानों पर, जबकि कल कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग द्वारा इस अवधि में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

0: पंचों जय जवान जय किसान।
1: पंच भाई देखल जा, अपन यही नारा के साथ अपन बैठकी शुरू भेल। भैया देखा, पूर्वांचल में एक जमाना रहल जब नगदी फसल के रूप में अपन खाली गन्ना के खेती,
0: बिल्कुल सही कहा,
1: बाद में था खेती होके लगल। लेकिन अपने पूर्वांचल में देखले मौता बड़ा तेजी से केला के खेती और अपन किसान रुझान बड़ा तेज।
0: बिल्कुल भैया देखा, लाभ दे वाली फसल है और लगभग 11 से 12 महीना में फसल तैयार भी हो जाए,
1: बहुत अच्छा पैदावार।
0: बिल्कुल, और एकरे खातिर जो जलवायु बा वो है क्षेत्र में उपयुक्त मिल जाले, गर्म गर्म और
1: ध्यान रखे
0: भैया। हम बता दें, सबसे पहली बात तो ये कि एकरे खातिर गर्म और समशीतोष्ण जलवायु जोन है बहुत अच्छा होले, न बहुत गर्मी पड़े न बहुत जाड़ा पड़े, और न्यूनतम तापमान एकर भैया लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहे चाहिए और अधिकतम 35 डिग्री।
1: अच्छा,
0: और अगर 25-30 डिग्री के आसपास तापमान बा तो ई बढ़िया में उत्पादन होला। अगर बहुत पाला पड़त बा, बहुत तेज गर्म हवा चलत या बहुत ठंडा बा, तो ऐसे जोन है केला के फसल के नुकसान पहुँचे।
1: माटी कैसन होके चाहिए भाई? हाँ, भैया कहीं के खेती कही,
0: बिल्कुल
1: माटी कैसन होके चाहिए
0: भाई? मिट्टी एकरे खातिर उपजाऊ होके चाहिए, जीवांश के मात्रा ज्यादा हो और दोमट मिट्टी हो या मटियार दोमट मिट्टी हो, तो ई जमीन जोन है एकरे खेती खातिर बहुत अच्छा मानल जाले।
1: अच्छा,
0: और

0: बतौला तो केला खेती कैसे कैल जा। निश्चित रूप से अपने किसान भाई ई जानकारी लेके लाभ उठाई हैं और केला के खेती अपन करी हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: भैया अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जा और देखो भैया उर्वरक में मिलावट के जांच के तरकी कैल जा। ये पर जयप्रकाश सिंह जी जानकारी देते हैं, अपने किसान भाई सुने और लाभ उठा।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: पुलिस?
6: मिस सीमा
5: जी,
6: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
5: क्यों? लेकिन मैं
6: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
5: डिजिटल अरेस्ट?
6: 1 लाख दो, बच जाओगे।
5: इतने पैसे?
6: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
5: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
7: हेलो मम्मा।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: किसान भाइयों, खेती बाड़ी खेती किसानी में कुछ कृषि निवेश हैं जिनकी आवश्यकता आपको पड़ती है, जिसमें मृदा आपके पास है, सिंचाई के साधन आपके पास है, बीज और उर्वरक प्रायः आप बाजार से खरीदते हैं। उर्वरकों का वर्तमान जो खेती का प्रचलन है, इसमें बड़ा महत्व है, कारण उन्नत प्रजातियां और अधिक से अधिक उत्पादन पाने की इच्छा। किसान भाई, आपके मन में यह बात आती होगी कि जो हम बाजार से उर्वरक खरीदने जा रहे हैं, जैसे यूरिया खरीदते हैं, DAP खरीदते हैं, फास्फेट खरीदते हैं, पोटास खरीदते हैं, जिंक खरीदते हैं, और आज के समय में तो कुछ जैविक खादें भी प्रचलन में है, जिनको आप प्राय अपने खेतों में जैविक खेती और मृदा संरचना को बनाए रखने के लिए खरीदते हैं, तो आपके मन में यह इच्छा होती होगी कि जो हम बाजार से अपना खरीद रहे हैं, अपनी पूंजी लगा रहे हैं, वह कहीं गलत उत्पाद, गलत प्रोडक्ट, गलत खाद तो नहीं मिल रही, या नकली या मिलावट खाद जिसको कह लीजिए, ऐसी कोई खाद तो नहीं मिल रही है जिसके ले जाने से आपके पैसे की बर्बादी हो रही हो, आपकी मृदा संरचना खराब हो रही हो और आपको इसका लाभ न मिल पाता हो। तो किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कभी भी आप बाजार में जाएं तो खाद खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपको यूरिया खरीदनी है, DAP खरीदनी है, जिंक सल्फेट खरीदना है, फास्फेट खरीदना है, पोटास खरीदना है। तो इस तरह की खादें प्रायः खुले हुए कभी नहीं लें, जब भी लें तो इनको बोरों में या पैकेट में पैक हो तब लेना चाहिए। दूसरी जानकारी कि सभी खादों का, दवाओं का, बीजों का एक निश्चित अवधि है, एक निश्चित जीवन है, उस जीवन के अंतर्गत ही हो, कोई ऐसी खाद न ले लें जो बहुत पुरानी हो, 10-5 साल से रखी हुई हो, तो उसमें उन जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे। अब किसान भाई यह जानना चाहेंगे कि अगर वो यूरिया खरीदने जा रहे हैं तो कैसे वह जान पाएंगे कि यह यूरिया नकली है कि असली है। किसान भाइयों, बड़ा सीधा सा और बड़ा आसान आपके घरेलू पहचान के लिए हम बताएंगे कि आप जब कभी भी यूरिया खरीदने जाएं तो आपने बोरों को, हमने पहले ही बता दिया कि सिले हुए पूरे पैक बोरे लें, उस बोरे को आप खोलें और खोलने के बाद से उसमें अपने नंगे हाथ को डाल दीजिए। आप हाथ को बाहर निकालेंगे, आपके हाथ पर देखेंगे आटे जैसा कुछ जो है पाउडर लगा हुआ होगा। अगर वो पाउडर थोड़ा है, थोड़ा मीन्स कि बहुत हल्के, जैसे घर में पहले जो है आटा वगैरह बोरी में डालते हैं या भंडारण करते हैं, हल्की फुल्की लग जाता है, उतना है, तब तो यह मान के चलें कि यह यूरिया लगभग ठीक होगी। दूसरी पहचान उसी के साथ आप देखेंगे कि जो दाने होंगे यूरिया के वो लगभग एक समान होंगे और गोल होंगे। तीसरी पहचान यूरिया की, जो आप सरलता पूर्वक कर सकते हैं कि आप एक गिलास लीजिए शीशे का और उसमें 2 चम्मच यूरिया डाल दीजिए, उसको आप चला देंगे, देखेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर एक घोल तैयार हो जाएगा। वह घोल जैसे बर्फ के पानी में ठंडापन महसूस होता है, उस तरह का ठंडापन महसूस होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती है तो यह मान लीजिए कि इस यूरिया में या तो मिलावट है या यह बहुत पुरानी यूरिया है। और एक और सरल सा तरीका है पहचानने का कि आप यूरिया के उसी घोल को जो आपने घोल बनाया है, वो आपके घर में कोई रोटी बनने वाला गर्म तवा हो या आपके घर में किसी और पात्र में जहां पर जो है आप आग से गर्म कर सकते हैं, वहां पर आप डालेंगे तो आपको पानी और उसी के साथ साथ

0: यूरिया में नत्रजन है वह भी आसमान में उड़के चला जाएगा, कोई भी दाग कोई भी पाउडर उस बर्तन में नहीं बचेगा। ये तो यूरिया के लिए पहचान हो गई। इस समय प्रायः सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगी खाद है डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। सभी किसान ये चाहते हैं कि हम मिक्सचर न तैयार करें, हमें डाई अमोनियम फास्फेट बाजार से लिया और खेत में डाल दिया। इसकी सबसे अच्छी पहचान है, गांव में अक्सर किसान खैनी खाता है चूना के साथ, तो आप उसमें से एक चुटकी चूना लीजिए, एक चम्मच आप डीएपी लीजिए और उसको मिला करके अपने हाथ पे जैसे सुरती मसलते हैं वैसे मसल दीजिए। मसलने के बाद से उसको आप सूंघेंगे तो बहुत तीक्ष्ण, मैं इतनी तीक्ष्ण गंध आएगी कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वह गंध नहीं आती है तो निश्चित रूप से जो यह डीएपी आप लाए हैं इसमें कोई कमी है। दूसरी पहचान डीएपी की है कि आपके घर में जब कभी भी खाना बन जाए तो उस तवे पर आप 4-6 दाने डीएपी के डाल दीजिए, तो जितने बड़े दाने आप डाले होंगे कम से कम उससे दुने आकार में वह हो जाएंगे। अगर वो बड़े होकर के दुगने आकार में हो जाते हैं तो यह मान लीजिए डीएपी सही है। अन्यथा की स्थिति में यदि वो यथावत बने रहते हैं या पिघल करके पानी जैसे होकर के गल के खत्म हो जा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह अच्छी गुणवत्ता की डीएपी नहीं है। तीसरी एक पहचान और है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने बाजार से खरीदा या बाजार में ही खरीदने गए हैं, आपके मन में लग गया कि भाई हम ये कैसे संतुष्ट हो जाएं कि ये डीएपी जो हम ले जा रहे हैं ये सही है, तो उसके लिए एक आसान सा तरीका है, 4-6 दानों को आप लीजिए डीएपी के और नाखून से उसको कुतरने की कोशिश करें। जैसे गांव में आप कोई अनाज है प्रॉपर सूख गया नहीं तो दांत के नीचे करते हैं कट की आवाज होती है, दूध शुद्ध है कि नहीं उसमें उंगली डाल करके और कहीं बूंद टपकाते हैं जो है देखते हैं कि ये शुद्ध है कि नहीं, इसी तरह से उसको नाखून से कुतरने की कोशिश करें। डीएपी जो शुद्ध होगी वो नाखून से आसान से कुतरी नहीं जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि उसकी जो कोटिंग होती है वह सख्त होती है। अब तीसरी जो खाद प्रायः किसान जो आलू उगाते हैं या जो सरसों की खेती करते हैं वह डालते हैं फास्फेट। कुछ लोग उसे सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं, कुछ लोग उसको जो है ग्रेनुलर सुपर फास्फेट कहते हैं। दोनों फास्फेट के पहचान का एक तरीका यह है, जैसा हमने आपको बताया कि डीएपी के दशा में जब आप उसको गर्म करते हैं तो उसकी साइज में परिवर्तन हो जाता है, फास्फेट जब आप गर्म करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीधी सी पहचान डीएपी से इतर इसीलिए कई बार देखते हैं कि ग्रेनुलर जो फास्फेट होती है, दानेदार जो फास्फेट होती है, उसको डीएपी के बोरों में या डीएपी खाद के साथ मिला करके किसानों के साथ धोखा हो जाता है। तो उसके पहचान का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको यह देखना है कि जो फास्फेट आपने परचेज किया है उसको जब आप गर्म कर रहे हैं तो किसी भी तरह से जो है उसमें कोई आकार में वृद्धि नहीं होगी, जो है फूलेंगे नहीं जो है। और जितने भी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हैं आजकल बाजार में, एनपीके भी मिल रहा है, 12-32-16 मिल रहा है, 20-20-0, ये सभी आकार में परिवर्तित होंगे, फास्फेट परिवर्तित नहीं होगा जो है। चौथा जो खेती किसानी में रोग की स्थिति में लगता था जिंक, अब उसका प्रयोग बहुत ही कॉमन हो गया है। जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो मैग्नीशियम सल्फेट सस्ता प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट ही प्रायः किसानों को मिल जाता है जिंक सल्फेट कह करके। इसमें किसान को यह सावधानी बरतनी है कि भाई जो आप जिंक सल्फेट ले रहे हैं, आपके घर में हमने बताया कि डीएपी आप ले गए हैं, 2 चम्मच डीएपी आप ले लीजिए, पानी में उसको घोल दीजिए, 1 चम्मच उसमें जिंक डाल दीजिए। आप अगर फटे दूध जैसा ऊपर कोई एक परत बन जाती है गिलास में जहां पर आपने घोल बनाया है डीएपी का, तो यह मान लीजिए कि यह सचमुच में जिंक है। और अगर घोल में कोई फटा ऊपर से पोर्शन नहीं दिखाई देता है, कोई आपको छाछ जैसा ऊपर नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब यह मैग्नीशियम सल्फेट है। एक और छोटी सी पहचान है इसकी जो है कि जिंक सल्फेट को पतला कास्टिक घोल में अगर आप इसको मिलाएंगे जो है तो इसमें एक मटमैला सा अवक्षेप फिर उसी तरह का जैसे फटे दूध को होता है, नीचे पानी दिखाई पड़ता है ऊपर दूध जैसा, उस तरह का एक अवक्षेप बन जाएगा जो है। और यह दोनों नहीं बनता है तो इसका मतलब यह है कि यह जो जिंक सल्फेट आप प्रयोग कर रहे हैं यह मिलावट युक्त है। तीसरी पहचान पोटाश के बारे में, पोटाश का रंग प्रायः जो है गेरुआ होता है, कई किसानों को तो भट्ठे की जो ईंट होती है उसके बुरादे को मिला देते हैं, कुछ लोग मोरंग मिला देते हैं। किसान भाई एक आसानी से पहचान समझिए, जब भी गेरुआ या भट्ठे का ईंट होगा आप उसकी को जल के साथ पानी के साथ घोलेंगे तो वो एक दूसरे में लेई जैसे हो जाएंगे और पूरे पानी का रंग लाल हो जाएगा, जबकि पोटाश की विशेषता यह है कि यदि उसको आप नम करते हैं तो आपस में उसके दाने चिपकेंगे नहीं। यह तो आपने अपने घर पे देख लिया कि उसके दाने किसी भी दशा में चिपकेंगे नहीं जो है। दूसरी चीज क्या होगी जो है कि पानी में आपने बताया कि एकदम साफ पानी आप एक शीशे गिलास में लीजिए और उसमें 1 चम्मच पोटाश को डाल करके चला दीजिए, चला करके थोड़ी देर प्रतीक्षा करें आप तो देखेंगे कि एक लाल सा हिस्सा पानी का, नीचे पानी दिखाई देगा सामान्य रंग का, ऊपर कोई 1-2 इंच जो है उस गिलास में आपको लाल रंग का एक अवक्षेप दिखाई पड़ता है, अगर ऐसा दिखाई पड़ता है तो वो पोटास सही है, क्योंकि गेरुआ रंग मिलाया हुआ होगा, भट्ठे की अगर जो है चूरन मिलाई हुई होगी जो है, तो वो पूरे पानी का रंग लाल दिखाई देगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों को एक और जानकारी देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि खेती किसानी में लागत बढ़ रही है, हमारे किसानों को जो है उनके मन वांछित उत्पादन नहीं मिल पा रहा है, और किसान यह भी कई बार पूछता है कि भाई अगर हम गलत खाद डाल देते हैं तो हमारी मृदा उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसान भाइयों, इसका सीधा सा उदाहरण यह है कि घर में हमारे आपके यहाँ जोरन पड़ता है, जिन लोगों को जोरन की मात्रा, जोरन का समय, दूध के तापक्रम का अंदाजा है, उनकी दही बनती है, अन्यथा वह जो है ना तो दूध बनता है न दही बनती है, वो फट जाती है। इसी प्रकार से अगर आपने संतुलित और अच्छे उर्वरकों का प्रयोग किया है तो आपकी खेती किसानी में मृदा संरचना ठीक हो जाएगी। यदि आपने मिलावटी खादों का प्रयोग किया है तो आपको मनवांछित उत्पादन नहीं मिलेगा और आपकी जो मिट्टी की संरचना है वो प्रभावित हो जाएगी। किसान भाइयों, इस समय आप लोग जैविक खादों का भी प्रयोग करते होंगे। जैविक खादों में कंपोस्ट हो सकती है, जैविक खादों में वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, जिसको गांव में केचुआ वाली खाद कहते हैं, या ट्राइकोडर्मा हो सकती है। तो इनके भी पहचानने के आपके कुछ गुण हैं जिनके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, और वह जानकारी इस प्रकार से करें आप कि आपको किसी भी स्रोत से ट्राइकोडर्मा मिला, जैव उर्वरक मिला, आप क्या करें कि अपने गांव में जो भी मिट्टी का गोबर का घूरा है उसमें सड़ी हुई खाद, पकी हुई खाद का 1 से 2 किलो मात्रा ले लीजिए, उसको आप छाये में कहीं साफ सुथरी जगह पे रख लीजिए, उसमें 2 ढक्कन ट्राइकोडर्मा का आप डाल दीजिए, या जिस भी जैव उर्वरक का परीक्षण करना चाहते हैं उसको उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद से क्या करें कि कोई फटे हुए जूट का बोरा हो, गांव का में आपके पुआल हो, उससे उसको ढक दीजिए और सुबह शाम रोज उस पर इतना पानी डालिए कि पूरी नमी उसमें बरकरार रहे। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि रुई जैसे एकदम बिल्कुल लच्छा बन करके आप अपने पुआल को हटाएंगे तो उसके पर पाएंगे। अगर वह रुई जैसा कोई चीज नहीं दिखाई पड़ता है, आपको उसमें फफूंद जैसी कोई रचना नहीं दिखाई पड़ती है, तो इसका मतलब कि उसमें ट्राइकोडर्मा या जैव उर्वरक में जो जीवाणु होने थे, जो बैक्टीरिया होने थे, वह उचित मात्रा में नहीं थे। इसी प्रकार से जब कभी भी वर्मी कंपोस्ट की बात आपसे की जाए तो आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि वर्मी कंपोस्ट में सभी केचुए काम नहीं आते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताएं कि जय गोपाल केचुआ की प्रजाति वर्मी कंपोस्ट के लिए काम आता है। तो उसकी पहचान का बड़ा आसान सा तरीका है, केचुआ से आप लोग परिचित हैं, एक हिस्सा उसका थोड़ा सा पतला होगा और दूसरा हिस्सा मोटा होगा। इस पहचान के साथ अपनी खेती किसानी को आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपकी मृदा संरचना बनी रहेगी।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: भैया देखा, ये तो रहल बदकही, उर्वरक में मिलावट के जांच कैसे कैल जा, जानकारी देते रहने जयप्रकाश सिंह दिहल जैन के धन्यवाद। और भैया देखा, कुछ जानकारी के बाद ही अपने किसान भाई लोगों से और कह लिया जा, भैया देखा धान के रोपाई के समय धीरे धीरे आवता, हाँ, और इसमें उर्वरक का प्रबंध कैसे कैल जा, ये जानल बहुत जरूरी
4: है। सही कहा भैया, ये नाते भैया हम चाहते हैं इससे लगे जुड़े जानकारी किसान में सुना, धान के

0: जुड़ल हूँ डॉक्टर एस के तोमर जी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक और कार्यकारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार जनपद गोरखपुर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। धान के रोपाई करत समय कौन कौन खास बात ध्यान रखे के चाहिए?
1: देखिए, सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जब भी किसान भाई धान की रोपाई करने जाते हैं तो दो तीन बातों का विशेष तौर से किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो धान की आपकी नर्सरी है वो देख लें कि 21 से 25 दिन की नर्सरी हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें मिलते हैं। सामान्य दशा में, सामान्य दशा में जहाँ आपकी जमीन जो है ऊसर नहीं है, अगर ऊसरीली जमीन है तो वहां पर आपकी नर्सरी जो है 35 से 40 दिन की नर्सरी अच्छी रहती है। एक बात का तो ध्यान रखें। दूसरी बात का ध्यान रखना है किसान भाई को कि आप जब रोपाई करते हैं तो आपके जो हमारी देसी प्रजातियां जिनको हम कहते हैं ओपी प्रजातियां भी कहते हैं, उनकी प्रति वर्ग मीटर पौधों की संख्या या जो पूंजे होते हैं उनकी संख्या 50 प्रति वर्ग मीटर होने चाहिए। हाइब्रिड में ये संख्या कम हो सकती है क्योंकि उसमें कल्ले ज्यादा निकलते हैं, लेकिन ओपी वेराइटी में हमारी वो कल्लों की संख्या 50 कम से कम होनी चाहिए। इसको किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, जब भी आप रोपाई करने जाते हैं तो ये ध्यान रखें, अपने लेबर को ये ताकीद करें कि आप जो धान है वो ज्यादा गहराई पर न गाड़े, तो उसकी जो गहराई है उसको सामान्य गहराई पर रखें। कई बार किसान भाई जब आप पाटा या लेवा लगाते हैं रोटावेटर से, ऊपर की मिट्टी बहुत ढीली हो जाती है और लेबर जो है उसको रोकने के लिए बहुत गहराई तक उसको गाड़ना पड़ता है क्योंकि पौधा रुकता नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर रोटावेटर से आपने लेव लगवाया हुआ तो थोड़ा मिट्टी जब पौधे को पकड़ने लायक हो जाए तब आप उसको जो है रोपाई कराएं। ज्यादा गहराई पर रोपाई करने से आपके कल्ले कम निकलते हैं और देर से निकलते हैं। तो एक चीज तो किसान भाई को ये रोपाई में ये ध्यान देना है। दूसरी बात यह है कि रोपाई आपको कब करनी है, जो समय है आपका उस पर विशेष ध्यान देने की बात है। देखिए, हमारे यहाँ जो मध्यम अवधि की प्रजातियां हैं या लंबी अवधि की प्रजातियां हैं उनकी रोपाई हर हाल में आपको जून लास्ट तक आपको कर लेनी चाहिए, यानी कि जून का जो आखिरी सप्ताह होता है उसमें अगर रोपाई कर लेते हैं तो आपको अच्छी पैदावार मिलती है। और आप इसके बाद अगर रोपाई जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो उसमें उत्पादन में थोड़ा फर्क पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखें। वैसे तो रोपाई जून के आखिरी सप्ताह से लेकर के और 15 जुलाई तक सामान्य प्रजातियों की रोपाई किसान भाई कर सकते हैं। जहां तक सुगंधित धान की बात है और खास करके हमारे क्षेत्र में चूंकि काला नमक की खेती बहुत होती है तो काला नमक की जो रोपाई है वो किसान भाइयों को चाहिए कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में किसान भाई करें, तो उसमें सुगंध आपको अच्छी मिलेगी। और जिसके लिए आप काला नमक की खेती करना चाहते हैं उसका जो फ्लेवर है, एरोमा जिसको कहते हैं, वो अच्छा आएगा। तो किसान भाई इन चीजों का जो है जरूर ध्यान रखें। जो लंबी अवधि की प्रजाति है खास तौर से उनकी जो रोपाई है वो थोड़ा इसके पहले किसान भाई कर सकते हैं जिससे आपका गेहूं की बुआई को लेट ना हो। तो इस चीज को किसान भाई ध्यान रखते हुए आप जो है रोपाई करें।
0: पौधा से पौधा का दूरी जैसे आप बतौली हैं कि 1 मीटर लम्हर 1 मीटर चाकर खेत बाटे, वो में 50 गो पूंजा होके के चाहिए आ एक जगह 2 गो धान का पौधा लगे के चाहिए
1: हाँ,
0: आ
1: दो से
0: धान
1: तीन
0: ज्यादा
1: को
0: गहराई पर रोपाई ना करे के चाहिए।
1: बिल्कुल
0: यही तरह से बढ़िया उपज मिले माटी का जांच करावला के आधार पर खाद जौन बा ओकर कितना प्रयोग करे के चाहिए।
1: हाँ। देखिए, इसमें एक जो रोपाई की हम बात कर रहे थे कि 50 पौधे होने चाहिए प्रति वर्ग मीटर, इसमें जो दूरी है अगर किसान भाई लाइन से रोपाई करता है, ज्यादातर हमारे किसान भाई लाइन से रोपाई नहीं करते हैं, हम किसान भाई से ये भी आग्रह करेंगे कि हमेशा लाइन से रोपाई करें। इससे क्या होगा कि पौधे को दूसरे पौधे से दूरी सामान्य होने के कारण उसको जो अपनी भोजन लेने के जो स्थान चाहिए वो उसको पर्याप्त मिलेगा, तो आपकी पैदावार होगी। इसके लिए 20 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आप पौधों की रोपाई करें। दूसरा, आपने पूछा कि उर्वरकों के बारे में, दो चीजों को विशेष तौर से किसान भाई को ध्यान देना चाहिए। एक तो हमारी वो प्रजातियां हैं जो मध्यम से लंबी अवधि की प्रजातियां हैं, इनमें प्रति हेक्टेयर जो नत्रजन पोटास फास्फोरस और पोटास की मात्रा है एनपीके जो तत्व रूप में हम कहते हैं वो 150 किलोग्राम नत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास

0: ये प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में किसान भाई को देना चाहिए। अब बात आती है कि इसको हम उर्वरक के रूप में कैसे बताएं, इतना होना चाहिए। तो इसमें देखिए किसान भाई को ये देना चाहिए कि आपको प्रति एकड़ 115 किलोग्राम यूरिया, 52 किलोग्राम डीएपी और 30 किलोग्राम, 27 से 30 किलोग्राम आती है मात्रा, लेकिन उसको देखते हैं, 30 किलोग्राम पोटास, जिसको हम म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, ये प्रति एकड़ मात्रा आपको देनी चाहिए। इसमें फास्फोरस और पोटास और नत्रजन की एक तिहाई मात्रा आप जो है रोपाई के समय अपने धान के खेत में देंगे। बाकी जो दो डोज बचती हैं वो कल्ले बनते समय और बाली आते समय, बाली निकलने के पहले आप अपने खेत में देंगे। तो इसको आप, ये तो उर्वरक की बात हुई कि आप कितना देंगे। अब बात आती है जिंक की। देखिए जिंक एक ऐसा तत्व है जो पौधे को बहुत कम मात्रा में चाहिए, और हम ये देखते हैं कि किसान भाई बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। एक तो जिंक को हर साल आपको खेत में नहीं देना है, अगर बहुत कमी आपके खेत में या आपके पौधे में नहीं दिखाई देता है तो हर साल नहीं देना है, और अगर आप देना है आपको तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट आप खेत की तैयारी के समय मिलाएंगे। रोपाई के समय जब आप डीएपी डालते हैं उस समय आप जिंक को नहीं डालेंगे। तीसरी बात, जब आप देखते हैं कि हमारी नर्सरी में ऊपर से पत्तियां सफेद हो रही हैं और आप खेत में आप रोपाई करते हैं और पत्तियां सफेद होती है, तो वहां पर अगर आपको कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो फेरस सल्फेट का छिड़काव एक होना चाहिए, और छिड़काव जो होगा उसमें 4 ग्राम फेरस सल्फेट और 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप अपनी नर्सरी में या आप अपने खेत में जहां आयरन तत्व की के बाद आपके खेत में खरपतवार आते हैं तो आप जो है 30 दिन के बाद में बिस्तरी बैग सोडियम का इस्तेमाल करें, 100 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें।
1: डॉक्टर एस के तोमर जी, आप इतना अच्छा जानकारी देनी कि धान के फसल के रोपाई कैसे कही जाए और एमे उर्वरक प्रबंध आ खर पतवार नाशी का प्रबंध कैसे कही जाए करे खातिर आपके बहुत बहुत

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: हाँ भैया देखा किसान भाई एक ही साथ अपने कार्यक्रम का समय पूरा होता चले के पंचों जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुने। निधियाओं ग्राम से राजेश तिवारी अपने 18 वर्षीय पुत्री संस्कृति तिवारी के लापता होने की सूचना हमें दे रहे हैं। गुमशुदा संस्कृति का विवरण कुछ इस प्रकार है। रंग गेहुआ, काले बाल, चेहरा गोल, इनके संबंध में किस कद 5 फुट 2 इंच, इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पे सूचित करें। राजेश तिवारी, ग्राम निधियाओं, जनपद मऊ। दूरभाष संख्या है 8858686142। इसी क्रम में एक और सूचना सुने। विनोद कनौजिया जी अपने 32 वर्षीय पुत्री प्रीति देवी के लापता होने की सूचना हमें दे रहे हैं। गुमशुदा प्रीति का विवरण कुछ इस प्रकार है। उम्र करीब 32 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ, इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पे सूचित करें। विनोद कुमार कनौजिया, ग्राम व पोस्ट इटैली, पोस्ट रतनपुरा, थाना हल्दारपुर, जिला मऊ। दूरभाष संख्या है 9918122811। एक और सूचना सुने। मनोज साहनी अपने 19 वर्षीय पुत्री रानी साहनी के लापता होने की सूचना हमें दे रहे हैं। गुमशुदा रानी का विवरण कुछ इस प्रकार है। रंग गेहुआ, चेहरा गोल, कद 5 फीट, उम्र करीब 19 वर्ष, इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पे सूचित करें। मनोज साहनी, मर्यादापुर, थाना रामपुर। दूरभाष संख्या है 87283746। दूरभाष पुनः एक बार फिर से सुने। 7821873746। बब्बन राजभर अपने 22 वर्षीय पुत्री मीना राजभर के लापता होने की सूचना हमें दे रहे हैं। गुमशुदा मीना का विवरण कुछ इस प्रकार है। कद 5 फीट, उम्र करीब 22 वर्ष, रंग गोरा, इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पे सूचित करें। बब्बन राजभर, ग्राम नवलपुर रतोही, पोस्ट कीरत सराय, थाना हल्दारपुर, ब्लॉक रतनपुरा, जनपद मऊ। इसी क्रम में एक और सूचना सुने। राजेश साहनी अपने 20 वर्षीय पुत्री रानी साहनी के लापता होने की सूचना दे रहे हैं। गुमशुदा रानी का विवरण कुछ इस प्रकार है। उम्र करीब 20 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ, इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पे सूचित करें। राजेश साहनी, मालिक ताहिरपुरा मऊ, माफ करिए एक बार फिर से सुने। राजेश साहनी, ग्राम मलिक ताहिरपुरा, जनपद मऊ। दूरभाष संख्या है 9125831996। एक और सूचना सुने। अवधेश जायसवाल अपने 16 वर्षीय पुत्री पायल जायसवाल के लापता होने की सूचना हमें दे रहे हैं। गुमशुदा पायल का विवरण कुछ इस प्रकार है। उम्र करीब 16 वर्ष, कद 4 फीट, रंग गेहुआ, इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पे सूचित करें।
ग्राम ग्राम लालीपार, थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर। पता एक बार पुनः सुने, अवधेश जायसवाल, ग्राम लालीपार, थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं आपसे। कुछ ही देर में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज आप सुनेंगे रामजीत शर्मा व साथी जी को। आइए सुनते हैं लोकधारा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: अभी आप सुन रहे थे रामजीत शर्मा व साथी से लोकधारा कार्यक्रम, और इसी इन्हीं के गीत के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी बोली का कार्यक्रम देश हमार। इसमें आज आप सुनेंगे कहानी दुई गो रोटी। कहानीकार हैं श्री कन्हैया लाल रोनियार जी। आइए सुनते हैं देश हमार।
1: लगभग अधिके घर परिवार में बुजुर्गन के बहुते सासत हो रहल बा। ऐसने देखे के मिलत बा कि बढ़ती उम्र के हो गईला के बाद वह लोग के देखभाल सही ढंग से नइखे हो पावत। जब तक महतारी बाप के शरीर में जांगर बा तब तक परिवार के लोग उनके खटावत बाने, आ जब देह कमजोर हो जात बा तो उनके हाल पर छोड़ दिहल जात बा। अगर बाप महतारी कौनो शिकायत चाहे अपने घर परिवार के विषय में कुछ जानल चाहत बाने तो उनके डांट के कहल जात बा कि तू लोग से ये सबसे का मतलब बा, तू लोग के तो अब दुई गो रोटी से मतलब रखे के चाही। बुजुर्गी में महतारी बाप के महत्व सिर्फ दुई गो रोटी तक ही सीमित हो गई। ऐसन सोच रखल दुर्भाग्यपूर्ण बा और सबके यह विषय पर विचार करे पड़ी। आज राम प्रसाद के घर बहुते चहल पहल रहल, कारण कि आज राम प्रसाद के जन्मदिन मनावे के आयोजन रहल, उ 101 बरिस के हो गई रहने। ई कहानी राम प्रसाद के ह जवन अपने परिवार सहित रघुनाथपुर नाम के नगर में रहत रहने। राम प्रसाद के भरल पूरल परिवार रहे, उनके परिवार में उनकर बेटा कमलेश उम्र 44 वर्ष, पतोही शांति उम्र 40 वर्ष, पोता अजय उम्र 15 वर्ष और पोती दीपा जिनकर उम्र 12 वर्ष के रहल। गुजर बसर बदे एगो किराना के दुकान और 4 बीघा खेत भी रहल। अच्छा से जिंदगी बसर होत रहल। यह तरह समय के पहिया आगे बढ़त रहल। कमलेश के विवाह योग भइला पर राम प्रसाद अपने बेटा के बियाह आशा के साथे कई दिहने और आशा बहु बन के

घर में आ गईली। 4 दिन के चमक चांदनी ऐसन दिन बीतल। पतोहा के नाम तो आशा रहल, लेकिन काम सगरो निराशा वाला रहल। उ केहुए से खाली मतलबे भर के बोले, अपने आप में मगन रहे। आ इहे संस्कार उ अपने बेटा अजय और बेटी दीपा के दिहले रहली। संस्कार के असर पोता पोती भी अपने दादा राम प्रसाद के संपर्क में नाम भर के ही रहें। बिना मतलब के उनसे बोलबो नहीं करें और न ही उनके पास बैठबे करें। बोलल स्नेह प्रेम के बात तो बहुते दूर के बा। देखते देखत समय पाँख लगा के उड़े लागल। राम प्रसाद के उम्र अब 60 बरिस के हो गई। एक दिन के बात है कि कमलेश अपने मेहरारू आशा से बातें बात में कहलें कि देखत बाड़ू समय कितना तेजी से भागल जा रहल बा। अब बाबूजी की उम्र भी अब 60 बरिस के हो गई। बाबूजी से न तू ही बोलेलू और न हम ही उतना ध्यान देवेनी। न तो उनकर पोता पोती भी बाबूजी के लगे कबो नहीं बैठेने। हाँ, समय समय पर रुपया पैसा जरूर मांग लेवेने। कमलेश और आशा आपस में राय करत रहल लोग कि मनई के जिंदगी के कौन ठीक बा। ना ही असली तो नकलिए व्यवहार स्नेह प्रेम अपनत के देखावा करके ही ई घर मकान और 3 बीघा खेत बा ओके अपने नाम से बैनामा रजिस्ट्री बाबू जी से करा लिहल जा। सब कुछ धन मकान संपत्ति कानूनी रूप से जब आपन हो जाई तो ओकरे बाद केकरा के पूछेला। ई बात सुन के आशा अपने पति कमलेश से कहली, रउआ ठीक कहत बानी। अब बेटा पतोही लोग यही योजना के अनुसार अपने बाबूजी के साथे अत्यधिक स्नेह प्रेम और अपनत्व के व्यवहार करे लागल लोग। करीब 1 साल बीतल। राम प्रसाद अपने बेटा पतोही के व्यवहार से पिघिल गए हैं और अपन जौन भी नगदी पैसा दुकान मकान और खेत जौन भी रहे कानूनी रूप से रजिस्ट्री बैनामा कमलेश के नामे कह दिए हैं। अब तक घर में हंसी खुशी के माहौल रहे लागल। यह तरह 1 साल बीत गए। राम प्रसाद के उम्र अब 70 साल के हो गए और अब परिवार के सब केहू अपन असली रूप दिखावे लगल। कौनो भी बात राम प्रसाद पूछें तो बेटा पतो उनके डांट के कहें कि बाबूजी तोहके ये सबसे का मतलब बा। तोहके तो अब 2 गो रोटी से मतलब रखे चाहिं जौन कि तोहके मिलते बा। कुछ महीना यह तरह से बीतल। अब राम प्रसाद बीमार रहे लगने। कमलेश समाज के दिखावे बदे बाबूजी के दवा पानी करावे। कमलेश अब अपने बाबूजी के बीमार रहले से परेशान हो गए रहने। 6 महीना में एक डॉक्टर से पूछ के दवाई ले आ दें, फिर 6 महीना पटा जाए। अब तो राम प्रसाद के शरीर हिले कांपे लगल। राम प्रसाद घर परिवार चलावे बदे अपने जिंदगी में बहुते मेहनत कैले रहले ताकि केहू के कोनो कमी न रह जाए। उ सबके संभरले, लेकिन उनकर जब कठिन समय आयल तो उनकर साथ केहू नहीं दिहलस। एक समय के बात है कि राम प्रसाद के पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ली। वह समय राम प्रसाद के हाथ खाली रहल आ कमलेश से तो कोनो मतलब ही नहीं रहे। जबकि बाबूजी के दुकान वह संभारे। थक हार के राम प्रसाद अपने खेत में से 1 बीघा खेत बेच के अपने पत्नी के दवा करौले, लेकिन वो बच नहीं पौली। उनका मृत्यु हो गई। पत्नी के मर गईला के बाद राम प्रसाद और टूट गए। साल भर बीतल। राम प्रसाद अपन सब कुछ बेटा कमलेश के नामे कह देने। समय अपने चाल से चलल जात रहल। राम प्रसाद बेर बेर बीमार पड़े। कमलेश अपने बाबूजी के अनिच्छा से खाना पूरी करके खातिर और समाज के दिखावे बदे दवा पानी करावे। एक समय के बात है कि कमलेश के ई पता लागल कि नगर में एगो सिद्ध महात्मा आयल बाने। कमलेश महात्मा जी से मिल के अपने बाबूजी के स्वास्थ्य के बारे में बतौले। महात्मा जी कहले कि बेटा दवाई तो आपन काम करबे करेला, ओकरे साथे साथे बूढ़ पुरनियन के प्रति पूरा परिवार के व्यवहार स्नेह प्रेम और अपनत्व वाला होके चाहिए। जबकि अच्छा बात व्यवहार और अपनत्व दिहला में एक भी रुपया

0: खर्चा नाही बा, लेकिन आश्चर्य के बात बा कि मनई सगरो लेना देना कर लेला, लेकिन बिना पैसा वाला स्नेह प्रेम के दूगो बोली नाई बोल पावेला। महात्मा जी कमलेश से कहले, तू और तुहार पूरा परिवार पोता पोती सहित अपने बाबूजी के विशेष ध्यान रख, उनसे प्रेम से बोल बतियाव और उनके पास कुछ समय नियमित रूप से बैठ। और हाँ, जौना कमरा में तुहार बाबूजी सूते बैठन है, वही कमरा में एक और चौकी बिछौना लगा के एक सज्ञान आदमी के उनके पास रात्रि में सूते के भी पड़ी। बुजुर्गन के विश्राम कक्ष ऐसने जगह होके चाही कि जहाँ से घर बाहर भीतर अइला गइला पर उनके ऊपर नजर पड़ सके। बुजुर्गी में अधिकांश समस्या के जड़ अकेलापन होला, और यही अकेलापन के समय में बुजुर्ग कुछ न कुछ सोचल करेले, और यह सोचल उनके बीमारी के प्रमुख कारण बनेला। अब तक कमलेश महात्मा जी के कहला अनुसार अपने बाबूजी के साथे व्यवहार करे लगले। करीब 6 महीना में ऐसा चमत्कार भइल कि राम प्रसाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। आज राम प्रसाद जी पूरे 101 वर्ष के हो गए। यही उपलक्ष्य में जन्मदिन के समारोह के आयोजन भइल है, जौना में पत्रकार भी आयल रहने। पत्रकार राम प्रसाद जी से पूछले कि दादाजी आप बताइए कि आपके जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ, जबकि आप विगत वर्षों में गंभीर रूप से बीमार पड़े थे और बचने की उम्मीद भी नहीं थी। तब राम प्रसाद जी कहे लगले कि स्नेह प्रेम और अपनत्व के अभाव आदमी और खास तौर पर बुजुर्गन के लिए जहर के समान बा और सब बीमारी के जड़ बा। हर आदमी के चाही कि उ सबके ऊपर विशेष रूप से बुजुर्गन के नियमित देखभाल करें, उनके अपनत्व स्नेह प्रेम प्रदान करें। बुजुर्गन के पास केहू बैठे ला नाहीं, बोले बतियावे ला नाहीं, तो बुरी तरह से टूट जाने। अरे बुजुर्ग कचरा के डिब्बा नाई हमें, बुजुर्ग हर परिवार के खातिर अनुभव के थाती बाने, उ भाग्यशाली बा जेकरा ऊपर बुजुर्गन के छत्र छाया बनल बा।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी बोली का कार्यक्रम देश हमार। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ कोनो चेतावनी नहीं है।
1: बिल्कुल भैया, देखो ये जो झोंकेदार हवा बताए हो इमा थोड़ा सावधानी बरतक चाहिए, घर से बाहर अनावश्यक रूप से न निकली। और यह के साथ साथ देखो अपने कार्यक्रम का समय भी समापन की तरफ हुई रहा है, तो पंच भाई से लीन जाए विदा।
0: जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम, साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आज लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
7: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है, और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ।
5: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। इसी क्रम में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने पीलीभीत के बनकटी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। श्री प्रसाद ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों को पक्का मकान देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लखनऊ में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
8: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और मांग के अनुरूप बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
9: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
5: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एनटीए ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है।
10: इसका मुख्य उद्देश्य एक साइबर वॉरियर्स की ट्रेनिंग है। साइबर प्रोटेक्शन की हर एक देश को इस समय अत्यधिक आवश्यकता है। मैं एडमिशन जेई एडवांस के द्वारा नहीं होगा, एडमिशन एक हैकाथॉन मुख्यतः के द्वारा होगा और इसका उद्देश्य है ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना जो कि प्रारंभ से ही इस दिशा में रुचि रखते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं।
5: केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में आज 4 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना थाना आसीवन क्षेत्र में हुई जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी ये पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम। साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहले सुनते हैं अरिजीत के गाए फिल्म एयरलिफ्ट से इस गीत को।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और मुर्तजा की आवाज़ में फिल्म अनवर का यह गीत। आइए सुनते हैं उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश की आवाज़ में फिल्म स्वदेश से अगला गीत।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की गाय फिल्म मेजर साहब के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफ़र यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को है। से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे काव्य पाठ

मेरी भव बाधा हरो राधा नागर शोय जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होय। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक वृंदावन में कदम के नीचे अपनी त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होने वाले श्री कृष्ण नित्य रश्मय विग्रह हैं और उनकी सहचरी निखिल गोपी मुकुटमणि राक्षसरी राधिका भी नित्य आनंदमय मूर्ति हैं। दोनों एक ही तत्व की युगल मूर्ति हैं। श्री कृष्ण राक्षसवर हैं, राधिका राक्षसरी। यही राधा कृष्ण के रास की नित्य स्वामिनी हैं। इनके बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। राधा चिन्मय विग्रहवती हैं, वह पार्थिव प्रतिमा नहीं परास पराशक्ति का प्राकट्य है। राधा भारती वांग्मय सरोवर में प्रस्फुटित होने वाली सर्वश्रेष्ठ कनक कंज कलिका है। वह काव्य की अधिष्ठात्री हैं, भक्ति का निर्झरणी है, कला के उत्स है और प्रेम की प्रतिमा है। हिंदी साहित्य का भक्ति काल इस नारित्य की सौंदर्य सृष्टि से अनुप्राणित है। हिंदी में विरह का विशद तथा वास्तविक वर्णन सर्वप्रथम मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति की पदावली में हुआ है। पीयूष वर्षी विद्यापति हिंदी के जयदेव हैं। हिंदी की कृष्ण काव्य रचना का प्रवर्तन विद्यापति के द्वारा ही हुआ तथा समस्त परवर्ती कवियों पर उनका प्रभाव दिखाई देता है, जिससे महाकवि सूरदास भी सम्मिलित हैं। रीतकाल की राधा कृष्ण भावना का मूल विद्यापति के पदों में ही है। पवित्र प्रेम से उत्पन्न विरह के अधिकतम होने पर अनुभूति क्षेत्र में प्रिय और प्रेमी एक हो जाते हैं। विद्यापति की विरहड़ी राधा प्रतिक्षण माधव माधव रटते हुए अहम मूल भूल जाती है, स्वयं माधव हो जाती है। अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदर भेल मधाय जो निज भाव समावही विसरल अपने गुण लुभधाय। राधा की सुंदरता का वर्णन करते हुए विद्यापति कहते हैं कि इस प्रकार की अनुपम सुंदरता का सार विधाता ने कहां से लाकर इस पृथ्वी तल पर एकत्र कर दिया है। उनकी सुंदरता देखकर कृष्ण मोहित हो जाते हैं। राधा की ओर दृष्टि जाते ही मानो करोड़ों कामदेव कृष्ण के चित्त को व्याकुल करने लगते हैं। उनकी ओर दृष्टि पड़ते ही वे विह्वल भाव से धरती पर गिर पड़ते हैं। देख देख राधा रूप अपार अपरूप के विधि आनी मिला ओल छवि तल जाव निसार। बिरहणी राधा के मनोभावों के चित्रण में विद्यापति ने अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया है। कृष्ण के आने की आशा से राधा के पास नींद नहीं आती और उनकी आंखें सदा घर के दरवाजे पर लगी रहती है। सेतु आगमन आसे नींद न आवे पासे लोचन लाग देहरी। सच स्नेह विचार का विषय नहीं, प्रेम तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है। स्नेह न विषय विचार सौंदर्य शास्त्र की एक गंभीर सूक्ति जहां आंतरिक आकर्षण के बल पर प्रेम प्रेमी तथा प्रेयसी को खींच कर लाता है, वहां विचार के लिए कोई स्थान नहीं होता। यह तो वह चुंबक है जो प्रिय के हृदय को प्रियसी की ओर बलात् आकृष्ट करता है। विमल कमल मधु सुधा सरिस विधु नेह न मधु बिदार हृदय सरिस जन न देखिए जातिखन तथिखन सफल अंधार। इसी क्रम में वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिष्ठित पुष्टि मार्गीय साधनों में भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वामिनी के रूप में राधा के आराधना की सुव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। राधा तत्व के विवरण में वल्लभाचार्य के सिद्धांत अन्य वैष्णव मतों के सिद्धांत से विशेष पृथक नहीं है। धर्म धर्मी मूलभूत अभेद भावना के कारण ये दोनों पृथक तत्व नहीं है, अतः इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों अभेद भावना द्वारा ही नित्य विद्यमान रहते हैं। पृथ्वी और गंध तेज और प्रकाश आकाश तथा व्याप्ति के समान इनका संयोग स्वाभाविक है। पृथक दिखने पर भी ये पृथक दिखने पर भी ये पृथक नहीं है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्तिकालीन काव्य में सूरदास ने
श्री राधिका के चित्रण में भगवान श्री कृष्ण के उनके विमल स्नेह तथा वियोग वर्णन में अपनी निर्मल प्रतिभा का विलास दिखा लाया है। शूर के सन्मुख राधा कृष्ण के लीला प्रसंग का एक व्यापक क्षेत्र था जिसके हर झलक को उनके दिव्य चक्षुओं ने देखा है। अतः विभिन्न दशाओं में राधा के मनोभावों के स्नेह की विभिन्न भावना भूमिका जैसे सरस तथा सुंदर वर्णन सूर ने उपस्थित किया है, उतना व्यापक तथा मोहक वर्णन अन्य किसी कृष्ण कवि के द्वारा चित्रित नहीं किया गया है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देख नहीं कहो ब्रज की खोरी। और प्रेमी में पर की प्रमुखता, आत्मा का ज्ञान ही ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्म की अनुभूति के लिए स्व की अनुभूति आवश्यक है। यह अनुभूति वैसे ही है जैसे किसी दर्पण में प्रतिबिंब को अलंकृत करने के लिए बिंब को ही अलंकृत करने की आवश्यकता होती है, न कि दर्पण में पड़े प्रतिबिंब को। ब्रह्म ज्ञान की यही प्रक्रिया है। आत्मनो अनुभावेन ब्रह्मणो अनुभवः। परंतु प्रेम का पंथ ही निराला है। प्रेमी के ऊपर अपने पूर्ण प्रेम को निवछावर कर देने पर वह प्रेम अपने ऊपर भी उद्भासित हो उठता है। राधा आह्लादिनी शक्ति हैं। वे जो प्रेम कृष्ण को समर्पित करती हैं, वही प्रेम उन पर उद्भासित होने लगता है। जिस प्रकार भगवान को समर्पित प्रेम तथा अनुराग लौटकर भक्त के पास आता है और वह भगवान का भक्त के प्रति प्रेम कहलाता है, राधा उसी भाव की साकार मूर्ति है। आह्लादिनी शक्ति रूपी राधा आनंद रूपिणी होकर ब्रज किशोर को भी आनंदित करती हैं। स्व को प्रेम पात्र बनाने की अभिलाषा हो तो पर को प्रेम का पात्र बनाना ही पड़ता है। प्रेम मार्ग की यही रीति है। राधा का जीवन सर्वस्व ही ब्रज नंदन है। समस्त दिव्य प्रेम के आधार तथा उज्जवल इसके अवलंबन इसी रस से राधा अनुप्राणित होती है। उनके हृदय के समस्त भाव कृष्ण में ही केंद्रित हैं। इतने से ही उनका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति समर्पित प्रेम सत गुणित होकर राधा को ही प्राप्त होता है। राधा के प्रेमो उल्लास का यही रहस्य है। कृष्ण राधा का यह परस्पर मिलन दिव्य है, नित्य है। यह आत्म रमण है। यह अपने ही स्वरूप में सच्चिदानंद की लीला है। सुर के अनुसार राधा कृष्ण में किसी प्रकार का वैविध्य नहीं है। कृष्ण के साथ राधा का मिलन उनके जीवन की आकस्मिक घटना न होकर यह एक शाश्वत सत्य है, किंतु मिलन की इन घटनाओं में नित्य नूतन अविरामता है, सौंदर्य शक्ति है, प्रेम का मधु प्रसार है। जीवन के प्रत्येक वह में राधा ब्रजनंदन के संसर्ग

0: उपयोग में आती है। बाल्यकाल में वे बाल्य सुलभ चपलता के साथ कृष्ण की बाल संगनी हैं। महारास में वे ब्रज नंदन के संग रासलीला में प्रवृत्त होकर अनुपम आनंद का विस्तार करते हैं। अक्रूर के आगमन तथा मथुरा गमन के अवसर पर राधा विरह वेदना से नितांत व्याकुल हो उठती हैं। उद्धव के पधारने पर वह अपने निर्मल निरंजन स्नेह की भव्य मंत्र की प्रस्तुत कर ज्ञान निधि के हृदय को बरबश अपने दुखमय जीवन को विश्व कल्याण के लिए स्वयं तक ही सीमित कर लेती हैं। अति मलिन वृषभान कुमारी हरिश्रम जल भिजियो उर अंचल तिही लालन न धुआ तवीर सखी छूटे चिकुर वदन कुमिलाने जो नलने हिम कर के भारे। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र के तीर्थ में कृष्ण के निमंत्रण पर पधार कर अपने जीवन की अंतिम अभिलाषा को पूर्ण करती हैं। राधा माधव भेंट भई राधा माधव माधव राधा क्रीट भृंग गति है जुग गई माधव राधा के संग राचे राधा माधव रंग रही। बिहंसी कहियो हम तुम नहीं अंतर यह कवि के उन ब्रज पढ़ई इस प्रकार सूर सागर में इतने विभिन्न प्रसंग उपस्थित किए गए हैं कि राधा के मानस पटल पर अंकित होने वाले प्रत्येक भाव की शाब्दिक अभिव्यक्ति पाठक को विभोर कर देती है। सुर की राधा एक समग्र नारी है जिसकी तुलना अन्यत्र दुर्लभ है। वह एक ऐसी गोपिका जिसका जीवन ब्रज नंदन में ही केंद्रित है। भक्ति काल के पश्चात रीत काल के कवियों में प्रेम की पवित्रता तथा गंभीरता को सबसे अधिक समझाने वाले देव ने इस भाव को इन शब्दों में प्रकट किया है। राधिका कान को ध्यान हरे तब कान हरे राधिका के गुनगावे आपनो आप ही में उरझे सुरझे विरझे समझे समझावे। इसके अतिरिक्त बिहारी सतसई भी रवि संग के रसता से ही सिक्त नहीं बल्कि उसमें भक्ति विरक्ति और नीति की भी त्रिवेणी भी प्रवाहित होती है। यद्यपि भक्ति कालीन कवियों जैसी उनकी भक्ति नहीं है तथापि यह स्वीकार करने का कोई सामर्थ्य आधार नहीं है कि बिहारी की भक्ति भावना में सच्चाई नहीं है। वास्तव में तदयुमीन मानो वृत्तियों से हटकर उनके धर्म भीरु मन से भक्ति विषयक जो उद्गार प्रस्फुटित हुए हैं वे उनकी ईश्वरी आशक्ति को प्रयास प्रत्यक्ष करते हैं। राधा नागर से अपने भव बाधा हरने की जो प्रार्थना उन्होंने की वह उनके उपासक डर का सच्चा उद्गार ही कहा जाएगा। आधुनिक लोक गीतों में राधा का मिलन प्रेम साकार रूप से दृष्टिगोचर होता है। राधा तथा कृष्ण का यथार्थ स्वरूप शास्त्रीय विवेचन का विषय न होकर सामान्य जनता के लिए उद्दात प्रेम तथा विशुद्ध प्रीति का प्रतिनिधि बन गया है। इस प्रकार राधा का जीवन काव्य जगत में प्रेम दर्शन का विस्तृत भाव्य है। ज्ञानी तथा प्रेमी का यही तो पार्थक्य, ज्ञानी में स्व की प्रधानता होती है, दोनों एक पूर्ण तथा परात्पर हैं। एक यदि राशेश्वर है तो दूसरी राशेश्वरी, उनमें न कोई स्त्री है न पुरुष, मात्र लीला विलास है। राधा और कृष्ण की यह नित्य आनंदमय लीला सर्वदा निरंतर चलती रहती है। इसमें न विराम न विश्राम, जहां उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। रूप में, रस में, सौंदर्य में, प्रेम तथा आनंद में सर्वस्व सर्वदा तथा सर्वथा। इस दुर्गम दुर्बोध तत्व को रसमय प्रक्रिया से सुगम सुबोध बनाना ही साहित्य का चरम लक्ष्य है और इस मधुर तत्व के साक्षात्कार में ही मानव जीवन का चरम अवसान है। माधुरी आहार बिंब दामिनी दसन्न द्रुति गौर श्याम अंग की तरंग मनु लहुरे ललित किशोरी सुन राधिका गोपाल धुने जापे सुख लूटे चाहे राधा कृष्ण कहुरे।
1: आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह जी को।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में सुगम संगीत का कार्यक्रम, और इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो चला है समाचारों का, जो अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
4: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

दो मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा। मुझे इश्क की आग में जलने दो, ये धुआं धुआं सा रहने दो। मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा।

अभी आप सुन रहे थे ग्लेम जूम की आवाज़ में फिल्म वो लम्हे का ये गीत। आइए सुनते हैं आतिफ की आवाज़ में अगला गीत फिल्म जहर से।

कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज़ में जब प्यार किसी से होता के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफ़र हमारा यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पंडित अजय चक्रवर्ती जी से शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित यस पंडित अजय चक्रवर्ती से ठुमरी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
4: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
3: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defence technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jade Affair of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The Shah Jade Affair was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2,35,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. The 19th Mumbai International Film Festival, MIFF 2026, a week-long celebration of documentary, short fiction and animation cinema, is all set up to begin on Monday. Addressing a curtain raiser press conference in Mumbai today, Managing Director of National Film Development Corporation, NFDC, Mr. Prakash Magdum, informed that the competition section will feature 144 films, including 52 international and 92 national entries. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-final of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Suyu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will face top seed Akane Yamaguchi of Japan.

0: in the semi-final tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 323.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। जय हिंद।